फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि, तदनुसार 29 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह

0: भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
2: विश्व संस्कृति के अनुपमेय ज्ञानागार वेद, जहां जीवन के शाश्वत सत्य की ओर इंगित करते हैं, वहीं वे सांसारिक जीवन में एकत्व, बंधुत्व, सामरस्य, सामंजस्य एवं सरूपता के भी संदेश वाहक हैं। एक ओर पारलौकिक श्रेयस पथ के उद्गाता हैं, वहीं वे लोक मंगल एवं प्रेयस के भी उपदेष्टा हैं। सब कुछ तो समाहित है मनीषियों से सदृश इस वेद वाणी में। ज्ञान है, विज्ञान है, यज्ञ विधान है, विश्व कल्याण है। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौ अनुचिंतयन्। भगवान भास्कर के सद्य प्रकाश की उस अरुणिमा के साथ जागृत वैदिक जीवन शांति पाठ से आरंभ होता है। हमारा संपूर्ण वातावरण शांतिमय हो, जब चारों ओर वातावरण शांत होगा तो जीवन में भी शांति आएगी, अन्यथा अशांतयस्य कुतः सुखम। ये शांति पाठ आज के आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वृक्ष और वनौषधि में व्याप्त प्रदूषण को शांत करने की कामना वाला मंत्र है। आज सभी तो कुछ प्रदूषित हो रहा है, वातावरण अशांत है, क्षुब्ध है। मंत्र आरंभ होता है, स्वर गूंजता है, कामना प्रकट होती है इन शब्दों में। यजुर्वेदी ये बटु गा उठता है, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति। भाव ये है कि द्यौ अर्थात जिस लोक से सूर्यमंडल का प्रकाश हम तक आता है वो द्यौ लोक शांत हो। अंतरिक्ष जो आज वैज्ञानिकों के उपग्रहों की होड़ का केंद्र बना हुआ है, जहां इस धरातल को आतंकित करते रहने की आशंका अशांत बनाती रहती है, वो अंतरिक्ष भी शांति धारण कर हमें अनुकूलता प्रदान करे। पृथ्वी जहां हमारा भौतिक जीवन संचालित है, जहां हम रहते खाते पीते और श्वास लेते हैं, वो भी शांतिमय बने। आप अर्थात जल भी शांत हो। जल जो जीवन है वो प्रदूषित हो उठा है। गंगा जैसी पावन सरिता प्रदूषित होकर अमृतमय न होकर विषमय एवं विषम होती जा रही है। उनकी शांति विशुद्धि की कामना की गई है। औषधियां एवं वनस्पतियां भी शांत और प्रदूषण

0: मित बने, खाद्यान्न जो हमारा जीवनाधार है वो प्रदूषित हो रहा है, वो भी अमृतमय बने। सभी देव शक्तियां शांतिमय हों, इन सब का नियंता परब्रह्म भी शांति धारण करे, ये सभी पदार्थ में शांति प्रदान करें। इस प्रकार इस पर्यावरणीय विशुद्धि मंत्र पाठ से ही एक वैदिक विद्वान का प्रभात होता है। शांतिमय वातावरण में ही मानव स्वस्थ, निरोग और पुष्टिमय जीवन का धारक बन सकता है। तभी वह शतम वसंतान, शत हेमंतान एवं शत शारदीय जीवन धारण कर सुखी जीवन जी सकता है।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: FM 14.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं नितिन मुकेश। आरंभ में इनके स्वर में कबीर की ये रचना सुनिए। संगीत निर्देशन शेखर सेन का है।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक

की जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में आज कलाकार हैं नितिन मुकेश। इनके स्वर में ब्रह्मानंद का लिखा ये भजन अभी आपने सुना। संगीत शेखर सेन ने तैयार किया था।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: संदेश से पहले गुरु नानक का लिखा भक्ति गीत आपने सुना, शेखर सेन की बनाई धुन पर नितिन मुकेश के स्वर में। अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि मंच। वार्ता का विषय है पशुओं के लिए पैरा का यूरिया उपचार।

किसान संगी हो, राम राम, जय जोहार। आज की चर्चा में हमन जानबो कि पैरा के यूरिया उपचार हर कतका लाभप्रद हावे पशु मन के आहार बर। पशु के स्वास्थ्य और गोरस उत्पादन के दृष्टिकोण ले हरा चारा और पशु आहार में आदर्श भोजन होना अब बड़ जरूरी होते। हरा चारा के संगे संग संतुलित पोषक तत्व तो प्रबंधन ले किसान भाई के गाय है, बकरी है, भैंस है, जो भी हमन पाले रहन ओकर वृद्धि और विकास होते। अगर हमन खर्चा ला कमती करना चाहतन तो हमन धान के जो पायरा होते ओकर यूरिया उपचार तकनीक ला अपना करके बेहतरीन लाभ ले सकतन। का होते, सामान्य जो पायरा रहते तेमा पोषक तत्व तो कम होते और प्रोटीन के मात्रा नगण्य होते, यानी प्रोटीन के मात्रा नहीं के बराबर होती। तो अगर पौष्टिकता ला बढ़ाए बर, प्रोटीन के मात्रा ला बढ़ाए बर पायरा की यूरिया उपचार करना चाहिए। एकर पर सामान्य विधि होते, पैरा की यूरिया उपचार बर एक क्विंटल पैरा लेना है। पैरा कुट्टी ला 6 इंच मोटा परत बिछाना रहते, गोबर से लिपी हुए फर्श होना चाहिए और पक्का फर्श में भी फैला सकता हो। और ओमा 4 किलोग्राम यूरिया ला 50 लीटर पानी में बढ़िया से घोल बना के पूरा पैरा कुट्टी में बढ़िया से छिड़काव करना है। जो हमन 6 इंच के मोटा परत बनाए ओमा बढ़िया से 4 किलोग्राम यूरिया लेना है, 50 लीटर पानी में घोल बनाना है, ओला छिड़काव करना है। और ध्यान रखना है संगवारी हो कि हमला टंकी वंकी में स्प्रे नहीं करना है। कावर हमन खरपतवार नाशी है या हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो भी हमन कर रहे थे तो ओकर से हमार पशु मन के ऊपर नुकसान हो सकत है। एक क्विंटल पैरा या पैरा कुटीला हमला पुनः फिर बिछाना है, फिर ओकर ऊपर में फिर वैसे जो घोल बना रहे थे तेला डालना रहते। यानी कि 4 किलोग्राम यूरिया 50 लीटर पानी में घोल बना के छलनी ले छिड़काव करना रहते। एक बार में 5 से 10 क्विंटल पैरा या पैरा कुटी की यूरिया घोल के छिड़काव करके तैयार किए जा सकते। संगीव पैरा या पैरा कुटीला सुरक्षित स्थान में दबा के रखना

पड़थे, एकर बर का हे पॉलीथीन ले बढ़िया ढकना पड़थे, यानी बढ़िया वाला ढक दिया, हवा के आवागमन नहीं होही, तो वहां संगवारी हो एक प्रक्रिया होते, और वो प्रक्रिया से संगवारी हो का होते 21 दिन में वाला ढक के रहता, तो वहां से यूरिया ले बने वाला जो अमोनियम गैस रहते, यूरिया से जो बने वाला अमोनिया गैस रहते, पैरा या पैरा कुट्टी में बढ़िया से मिल जाते और उहर पशु के आहार में जाते, तो पशु ला लाभ देते। 21 दिन के पश्चात हमला का करना रहते, वो पैरा ला खिलाना रहते, और खिलाए बर का करना है संगी हो, धीरे धीरे कम मात्रा में देना है, ओकर बाद धीरे धीरे बढ़ा सकता हो। एक खास बात ये देखा गई से कि सामान्य जो पैरा रहते और उपचारित और उपचारित जो पैरा रहते, दोनों में का अंतर देखे मिलते। सादा पैरा जो हमन खिलाथन या पैरा कुटी खिलाथन, कड़ा रहते और स्वाद नियाय अपाच्य होते, और यूरिया उपचारित करथन तो नरम और स्वादिष्ट और सुपाच्य होते। दोनों के अंतर देखा, एक कड़ा और स्वाधीन अपाच्य, तो दूसरा नरम और स्वादिष्ट और सुपाच्य। यूरिया उपचारित पैरा में ये खासियत रहते, सादा पैरा में प्रोटीन के मात्रा प्रतिशत जो है 0%, ऊर्जा के प्रतिशत 40% तक होते, और यूरिया उपचारित पैरा में प्रोटीन के मात्रा 4% और ऊर्जा के मात्रा 56% तक होते। और सादा पैरा मका होते हानिकारक पदार्थ ऑक्सलेट और सिलिका होते, जोन हर पशु के ओकर स्वास्थ्य पर हानिकारक हावे, कैल्शियम के मात्रा ला भी घटाते। तो ऐसने में यूरिया उपचारित पैरा में हानिकारक जो पदार्थ रहते ऑक्सलेट और सिलिका, यह धुरिया हो जाते, नष्ट हो जाते। तो एक दृष्टिकोण से हमन कहबो तो पैरा के यूरिया उपचार तकनीक बहुत ही लाभकारी हावे। एक क्विंटल पैरा ला उपचारित करना चाहतन तो हमला 50 लीटर पानी लेना है, 4 किलोग्राम यूरिया लेना है, ओला घोल बना के छिड़काव करना है, ऐसे परत दर परत करके हमन एक पैर में 5 से 10 क्विंटल पैरा कुटी के उपचारित कर सकथन, और ओला बढ़िया ढाक करके 21 दिन के बाद ओला खिला के हमार पशु ला बढ़िया जो आहार है पैरा कुटी बढ़िया आहार है जो पैराकुटी है ओला यूरिया उपचारित करके हमन खिला सकतन।

प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच में आज आप सुन रहे थे पशुओं के लिए पैरा का यूरिया उपचार विषय पर वार्ता। कार्यक्रम कृषि मंच अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:40 पर रामचरितमानस गान भाग 118 का प्रसारण आप सुनेंगे। देश गान आप सुनते हैं 6:50 पर। 7:05 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड का। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोका का समय 7:35 का। 7:45 पर हम आपको सुनवाते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा 8:30 पर। 9 से 10 बजे तक आप विविध भारती के साथ रहेंगे। इस बीच 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। सुगम संगीत ये कार्यक्रम हम लेकर उपस्थित होंगे 10:10 पर। 10:30 पर आपके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम आपके फरमाइश में। 11 से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का समय शाम 5:10 का। 5:30 पर शहरी महिलाएं अपना कार्यक्रम वनिता विहार सुनेंगी। कार्यक्रम में आपस की बात का विषय है मृत्यु के बाद भी अमर रहेगी दृष्टि, जब नेत्रदान से रोशन होगी किसी की सृष्टि। चर्चा का विषय देश के विकास और स्वास्थ्य का पैमाना,

0: कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 118, स्वर श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का है और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी, श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुश ध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण, शील, सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गयी। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान, इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

अभी आप श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे के स्वर में रामचरितमानस गान भाग 118 का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी की प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। रामचरितमानस गान अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देशगान। समूह स्वर में खुर्शीद अजय का लिखा ये देशभक्ति गीत सुनिए।

0: प्रतिनिधिमण्डल स्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु कर्नाटक केरल लक्षद्वीपराज्यानां त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा जनसेवा सांस्कृतिक परम्परा उद्योग शैक्षणिक सहयोग मत्स्य पालनादि प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य इरोडनगरे कोङ्गु विल्लालर इन्स्टिट्यूट् आफ् टेक्नोलॉजी ट्रस्ट् इत्यस्य संस्थापकदिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेंगलुरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडेवर्यस्य शतवार्षिक समारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य बेलावन सेन्थिल कुमारः गतरात्रौ निर्णायकस्पर्धायां वलाज फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितम्बर को होंगी।

0: परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड। कार्यक्रम के आरंभ में हेलमेट फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ब्रजेश शांडिल्य की आवाज में। वायु का लिखा ये गीत आप सुनेंगे तनिष्क और वायु के संगीत पर।
2: कृपया ध्यान दीजिए,
3: गूंज उठी शहनाई।

0: ध्यान दीजिए।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: ये आवाजें थीं रश्मीत कौर जिगर सरैया की। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा यह गीत सचिन जिगर ने संगीतबद्ध किया फिल्म थामा के लिए। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं फ्रेश बॉलीवुड, नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। और अगला गीत आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास।

0: सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड में अब जो ये गीत आप सुनेंगे, इसे हम आपको सुनवा रहे हैं सरदार का ग्रैंडसन। इस फिल्म से दिव्य कुमार की आवाज, मनोज मुंतशिर की बोल और तनिष्क बागची का संगीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

हम दो हमारे दो फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाज़ में, शैली का लिखा ये गीत और सचिन जिगर का संगीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ से। अगला गीत सिकंदर फिल्म से सुनिए, अमित मिश्रा और आकाशा और साथ ही आवाज़ सिद्धार्थ मिश्रा की, समीर का लिखा गीत और संगीत जैम 8।

0: कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड के अंत में आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल के स्वर में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली की बनाई संगीत पर, और फिल्म का नाम रेड टू। रेड टू फिल्म के इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।
1: झरोखा

दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम झरूखा में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आज के दिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिवस पर आज चर्चा का विषय है खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। दोस्तों खेल को केवल मैदान और पदक तक सीमित नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमारे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और बेहतर जीवन से ये जुड़ा हुआ है। श्रोताओं, आज 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिवस है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ध्यानचंद जी ने अपने खेल कौशल से भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया और उनकी खेल प्रतिभा आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस का अर्थ केवल महान खिलाड़ियों को याद करना ही नहीं है, इसका वास्तविक संदेश है कि खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। आज की जीवन शैली पर नजर डालिए, बच्चों का काफी समय मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर बीत रहा है। बड़े लोग काम के दबाव और व्यस्तता के कारण शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते, परिणाम स्वरूप हमारा शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा है। ऐसे में खेल और व्यायाम हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। खेल हमें केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाते, बल्कि अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और टीम भावना भी सिखाते हैं। दोस्तों, मैदान में खिलाड़ी सीखता है कि हर मुकाबला जितना जरूरी नहीं है, कभी जीत मिलती है कभी हार, लेकिन हार के बाद फिर उठकर प्रयास करना ही असली खेल भावना है। यही सीख जीवन में भी काम आती है। दोस्तों, खेल का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति को क्रिकेटर, हॉकी खिलाड़ी या एथलीट ही बनना है। खेल का अर्थ है अपने शरीर को सक्रिय रखना। अगर आपके पास मैदान है या खुला क्षेत्र है, घर में ही थोड़ा सा स्पेस है या फिर छत पर भी, आप सुबह या शाम कुछ देर पैदल चलिए, योग कीजिए, दौड़ लगाइए, रस्सी कूदिए, साइकिल चलाइए, बैडमिंटन खेलिए या अपने बच्चों के साथ कुछ देर मैदान में जाकर खेलिए। ज़रूरी यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालें। और बच्चों के लिए तो खेल और भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बच्चों को केवल किताबों और परीक्षा के अंकों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन खेल भी उतना ही आवश्यक है। खेलते हुए बच्चा अपने साथियों के साथ मिलकर रहना, नियमों का पालन करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना और हार को स्वीकार करना सीखता है। इसलिए माता पिता से भी एक छोटा सा आग्रह है, बच्चों को खेलने के लिए समय और अवसर जरूर

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: प्रिया, अवनीश, वर्धन।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम भाचे मादर। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं झाला राम साहू और साथी।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस

0: अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:55 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 8 बजे समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा। समाचारों के बाद आकाशवाणी रायपुर से कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण होगा 8:30 पर। 9 बजे से 10 बजे तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ और 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे 10:10 पर। 10:30 पर आपके पसंद के फिल्में गीत कार्यक्रम आपकी फरमाइश में प्रसारित किए जाएंगे। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम हम लेकर उपस्थित होंगे 5:10 पर। 5:30 पर शहरी महिलाएं अपना कार्यक्रम वनिता विहार सुनेंगी। कार्यक्रम में आपस की बात का विषय है, मृत्यु के बाद भी अमर रहेगी दृष्टि, जब नेत्रदान से रोशन होगी किसी की सृष्टि। चर्चा का विषय देश के विकास और स्वास्थ्य का पैमाना खेल, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। फरमाइशी गीत का ये क्रम आप सुनेंगे और भूकंप जैसी आपदा में जागरूकता ही फैला बचाव है, ये है चर्चा का विषय। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 6:20, 7:00 और 8:30 पर। 7:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 8:00। 9 बजे से 10 बजे तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ। कार्यक्रम विविध संगीत हम लेकर आएंगे 10:00 और 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुन सकेंगे। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने वाले हैं, अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के UPI पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा UPI पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमरीकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जैवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेगी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित

0: सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित

0: Education system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vellavan Senthilkumar wins PSA Budapest Squash Open title, beating Bulaj Farkas of Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर 8:30 होने वाले हैं हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा
2: ये रायपुर केंद्र है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुनिए मुंह के विभिन्न रोग और ओरल कैंसर के कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता प्रस्तुत करता है रमा शंकर

0: श्रोताओ नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, आज के भाग दौड़ के परिवेश में अपने लिए ही समय निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, और जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे शरीर में कुछ असामान्य होता है तो हमें जरूरत होती है कि हम इसे गंभीरता से लें और डॉक्टर से जाकर मिले। श्रोताओ, हमारा मुंह हमारे शरीर का बहुत ही आवश्यक अंग है। हमारे मुंह से जुड़े हुए कई शरीर के अंग होते हैं, जैसे कान, नाक, गला, तो इनमें भी कई तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं। श्रोताओ, अभी खान पान में हो रहे बदलावों और दिनचर्या में हो रही परिवर्तन के कारण हमें कई ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, और कभी कभार हम गंभीर रोगों से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो श्रोताओ, आज के समय में कान, नाक और गले से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इनके उपचार क्या होते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने संपर्क किया है डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी से, जो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कान, नाक और गले की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम तौर पर देखने को मिलती हैं?
1: जी हाँ, जैसा विदित है कि नाक, कान और गला, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आमतौर पर यदि जैसे अभी का मौसम ठंड का है तो प्राय सर्दी के मरीज देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बीमारी मुंह से संबंधित, मुंह में छाला का होना, ये आम रूप से पाया जाता है। और तीसरा कान से संबंधित जो बीमारी है उसमें कान का दर्द होना या सुनाई कम देना, इस तरह की जो बीमारी है आमतौर पर अभी देखी जा रही है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम मुंह की बात करते हैं तो मुंह में जो अधिकतर हम देखते हैं कि मुंह में छाले हो जाना और मुंह में कुछ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक मुंह की तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं?
1: मुंह में देखिए, सामान्य बीमारी जिसमें से छाला का होना होता है, और यदि विशेष बीमारी या ऐसी गंभीर बीमारी जिसके इलाज में कई बार ये लाइलाज की तरफ में चला जाता है, वह कैंसर होता है। तो और इसके साथ साथ मुंह में चोट भी लग जाती है, ट्रॉमा भी होता है, कई बार मुंह के अंदर की जो चमड़ी रहती है वो दांतों के बीच में फंस करके कट जाती है। तो इस प्रकार से जीभ में सूजन आ जाता है जिससे बात करने में दिक्कत होती है। कई बार जीभ जो रहती है सही ढंग से काम नहीं कर पाती है और बात करने में बोली में लड़खड़ाहट रहती है।
0: जी जी।
1: तो ये मुंह की जो बीमारी है वह मुंह के छाले से शुरुआत होती है और गंभीर बीमारी कैंसर तक होने की भी संभावना रहती है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कैंसर, तो
1: जी
0: अभी वैश्विक तौर पर देखें और साथ ही भारत को देखें तो ओरल कैंसर एक बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। तो हम ओरल, मुंह के जो कैंसर होता है जिसे ओरल कैंसर कहते हैं, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और जब मुंह में कैंसर होता है तो इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं?
1: जी, मुंह में जो कैंसर होता है वो सामान्य रूप से सबसे पहले छाले के रूप में परिलक्षित होती है, अर्थात मरीज को ऐसा लगता है कि उसके मुंह में छाला हो गया है। आमतौर पर जो छाले रहते हैं वह 5 से लेकर 7 दिन की समय अवधि में वो ठीक हो जाते हैं, परंतु जो कैंसर के जो छाले रहते हैं वह जो रहते हैं लंबे समय तक दवाई का उपयोग करने के बावजूद

0: भी ये ठीक नहीं होते हैं, घाव भरते नहीं हैं, और धीरे धीरे ये कैंसर के जो छाले रहते हैं वो आकार में बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें जो है कोई भी चीज टच होती है तो इससे ब्लड भी निकल सकता है, दर्द भी रहता है, और इन छालों के कारण से गले में उभार आती है
1: जी।
0: या गठान जो है गठान आना होता है। आमतौर पर मुंह के छालों में गठान आने की समस्या ना के बराबर रहती है, परंतु यदि मुंह के छाले यदि कैंसर वाले हैं तो निश्चित रूप से उसके गले में गठान यदि आ चुकी है तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि उसका कहीं ना कहीं संबंध कैंसर से रहता है। और ये कैंसर, मुंह का कैंसर अपने एरिया में प्रभावित है, काफी संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। उसका प्रमुख कारण जो है दो रहता है। पहला कारण जो रहता है वह तंबाकू का सेवन, जो कि आमतौर पर यदि सरगुजा की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 40% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। ये तंबाकू में लगभग 52 प्रकार के केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि मुंह के कैंसर के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। और भी उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं जिनकी संख्या 4,000 से 7,000 तक बताई जाती है, जो कि शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। परंतु 50 से लेकर 55 तक के केमिकल्स जो होते हैं तंबाकू के, वो जो रहती है मुंह के कैंसर को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यदि कारणों में यदि बात किया जाए तो तंबाकू जो है वह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरे कारणों में बात किया जाए तो मुंह में यदि दांतों से यदि बार बार मुंह के अंदर की जो त्वचा होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं वह यदि बार बार कट रही है तो इसमें भी ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ साथ मुंह कटने के साथ साथ ये जीभ जो रहती है वह भी यदि बार बार कट रही है, बार बार ट्रामा यदि हो रहा है तो उसमें भी इस तरह के कैंसर होने की संभावना हो सकती है।
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई एक हिंदी गीत हमें बताएं जो इस कार्यक्रम के दौरान हम और हमारे श्रोता सुन सकें।
0: जी हाँ, ये गीत जो है काफी मेरे समीप है, जिसमें जिसके बोल है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: जी जी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैलेन गुप्ता जी से, जो प्रोफेसर हैं नाक कान गला विभाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे ओरल कैंसर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, को जैसा आपने बताया कार्यक्रम में कि तंबाकू, गुटखे, जिनसे मुंह के कैंसर का खतरा होता है, इनके उपयोग के अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं जो मुंह के कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं?
1: कुछ अधिकांश यदि मुंह के कैंसर की यदि बात करें तो 85% से लेकर के 95% तक का कारण जो है वह देखने के लिए तंबाकू का सेवन होता है। 5% अन्य कारणों में यह अनुवांशिकी कारण भी हो सकता है, जिसमें से यदि परिवार में किसी को यदि कैंसर पहले से रहा है तो मुंह में कैंसर होने की संभावना जो है वह उसके बनने की संभावना रहती है। और जो तीसरा कारण के बारे में मैंने जिक्र किया था कि यदि मुंह में यदि जो दांत है वो यदि शार्प है या नुकीले दांत है, जिससे बार बार जीभ में या मुंह के अंदर की मुकोसा में यदि चोट लगती है तो बार बार घाव बनने के कारण से भी यह जो है कैंसर हो सकता है।
0: जी जी।
1: और मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जो कैंसर होते हैं वो उसके जो छाले रहते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो लगातार जो रहते हैं बढ़ते रहते हैं, परंतु जो सामान्य वाले छाले रहते हैं वो कई बार जो रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, फिर से दोबारा होते हैं। तो जो ठीक हो जाते हैं बार बार छाले होते हैं वह कैंसर के प्रकार में नहीं आते हैं। कई बार मरीजों को ये लगता है कि उनको छाले जो है

0: बार हो रहा है तो ये कहीं कैंसर का तो रूप नहीं है। इस बात में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि छाले पूरी तरह से यदि ठीक हो जा रहे हैं तो इसका अंदाज यह निश्चित रूप से है कि वह छाले आपके कैंसर के छाले नहीं है।
1: जब किसी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना हो जाती है तो उसके कौन कौन से मेजर सिम्टम्स हैं जो मुंह के कैंसर में प्रकट होते हैं?
0: जी, सबसे पहला चीज तो ये रहता है कि देखने पर ये जो छाले रहते हैं वो हील नहीं होते हैं, अर्थात नॉन हीलिंग अल्सर जिसे हम लोग टर्म को यूज करते हैं, अर्थात घाव बना रहता है जो समय गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात रहती है कि जो गले में गठान के रूप में ये कैंसर की बीमारी गले तक पहुंचती है तो गले में गठान आती है। तीसरी बात रहती कि ये बीमारी यदि जीभ के नीचे यदि आती है तो जीभ जो रहती है मुंह नहीं कर पाती है, तो बोलने में खाने पीने में ये जो रहती है वह दिक्कत होती है। चौथी बात होती है कि चूंकि छाले हमेशा बने रहते हैं तो इस प्रकार के छालों में मरीज को मिर्च मसाला का चीज खाने में विशेष रूप से सामान्य की तुलना में ज्यादा तकलीफ होती है। यदि ऐसे कोई भी सिम्टम्स यदि मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सिम्टम्स में कैंसर में भी होते हैं और भी दूसरे मुंह के छाले में हो सकते हैं, परंतु ये जरूरी है कि समय रहते हुए इसका चिकित्सक से दिखा करके उचित चिकित्सकीय परामर्श और इलाज जो है वह लिया जा सके, ताकि यह बीमारी कैंसर जो कि आरंभिक स्थिति में पूरी तरह से इलाज से ठीक हो सकती है, परंतु यदि इसमें कोई लापरवाही बरती गई या इसके इलाज में या लक्षण को पहचानने में देरी हुई तो यह कैंसर का बीमारी जो है वह लाइलाज हो जाता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसके प्रथम स्टेज यानी इसे अर्ली डायग्नोस किया जाए तो व्यक्ति की बचने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी,
1: तो
0: जी, जब व्यक्ति सामान्य जीवन जीवन भर जो है व्यतीत कर सकता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जब हम देखते हैं कि कई बार जो अत्यधिक गुटखा तम्बाकू और नशे की चीजों को सेवन करते हैं उनका मुंह जो है खुलना बंद हो जाता है या एक फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए कत्ते, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारे कैंसर जो है वह किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। ये जो है हमारे शरीर में रक्षात्मक कवच रहती है, ये रक्षात्मक कवच जो है म्यूकोसा के रूप में रहती है, मुंह में म्यूकोसा के रूप में रहती है। जब तक ये कवच यदि मजबूत है तो किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता है, परंतु ये कवच यदि टूट जाता है अर्थात छाला बन जाता है जैसा, तो फिर वैसे स्थिति में ये कवच टूटने के बावजूद बाद में ये जो है कैंसर बनने की संभावना ज्यादा रहती है। गुटखा जो खाते हैं या तंबाकू खाते हैं कई बार देखा गया है कि उनका मुंह जो रहता है वह कम खुलता है या ज्यादा मुंह खोल नहीं सकते हैं, तो उसका कारण क्या रहता है कि जो म्यूकोसा की जो सामान्य सेल्स रहती हैं वह डैमेज हो जाती हैं और उसके स्थान पर फाइब्रस टिश्यू जो रहती है जो कि कड़ा रहता है जिसमें से लचीलापन एकदम ना के बराबर रहता है, ऐसे टिश्यू जो रहते हैं वह लगातार गुटखा या तंबाकू या पान के चबाने से वह प्रतिस्थापित हो जाते हैं और व्यक्ति जो है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। धीरे धीरे यह आरंभिक स्थिति रहती है। यदि ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति का मुंह कम खुल रहा है तो उसमें यदि चोट लगती है सामान्य रूप से छाला होता है तो सामान्य की तुलना में जैसे मैंने चर्चा किया कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस वाले मरीज में यह छाला को ठीक होने में लंबा समय हो जाता है और कई बार ये छाले जो रहते हैं कैंसर के छाले जो रहते हैं बन जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस या मुंह का कम खुलना भी एक तरीके से ये कैंसर के पहले का लक्षण होता है। क्या ये कैंसर नहीं होता है? समय रहते यदि व्यक्ति यदि ये सब नशा से यदि दूर हो जाता है तो ये चांसेस रहती है कि धीरे धीरे इसका मुंह जो रहता है नॉर्मल रूप से खुल सकता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब एक कहावत है कि सावधानी ही बचाव है, तो यदि हम देखें कि कैंसर के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और हमें इन्हें अर्ली डायग्नोसिस करवा लेते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो जो इसके कैंसर के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ स्टेज होते हैं तो इसमें जो इन स्टेजेस की अगर हम तुलना करेंगे तो यदि व्यक्ति फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस हो जाए तो उसके जीने की चांस बढ़ जाती है, और यदि इसके बाद के और जो स्टेजेस होते हैं वहां पे कितना चांस होता है मरीज के बचने के?
0: उसमें भी आज की डेट में ट्रीटमेंट को लेकर एडवांसमेंट है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी काफी एडवांस स्थिति में है, तो व्यक्ति को निराश तो नहीं होना है,

0: परंतु जैसे जैसे बीमारी फैलती चली जाती है वैसे वैसे जो है बीमारी को ज्यादा मात्रा में निकालने की आवश्यकता बढ़ती है, तो व्यक्ति का जीवन जो रहता है कम्प्रोमाइज जाता है। सपोज कि यदि व्यक्ति यदि मुंह से यदि खाना नहीं खा पा रहा है, जबड़ा उसका निकाल देना पड़ा तो अल्टरनेट खाने के लिए उसके पेट से व्यवस्था करनी पड़ती है, सांस यदि नहीं ले पा रहा है तो फिर सांस में अलग से उसको सांस की नली लगानी पड़ती है। तो व्यक्ति का जीवन तो लंबा कर सकते हैं बात के समय में, परंतु जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है सामान्य व्यक्ति की, वह सामान्य क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहते हैं वह नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि मुंह के संबंध में, छाले के संबंध में यदि थोड़ी सी भी संभावना है, थोड़ी सी भी शंका है, तो निश्चित रूप से आरंभिक स्थिति में चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए उचित परामर्श के बाद में। स्पेशली ऐसे छाले जो कि लगातार 10 दिन तक बने हुए हैं और ठीक नहीं रहे हो रहे हैं, उनको जरूर चिकित्सकीय परामर्श से ही इलाज जो है वह ले लेना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, और जैसा आपने बताया कि जो कैंसर के स्टेजेस होती हैं उसमें जितना जल्दी अर्ली डायग्नोस होगा बचने के चांसेस उतने अच्छे होते हैं, तो डॉक्टर साहब हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ओरल कैंसर होता है तो इसका यदि जांचे की जाए और जांच करने के बाद पता चलता है कि ओरल कैंसर है, तो सबसे पहले इसकी जांचे किस तरह होती हैं और इसका पता किस तरह लगाया जाता है?
0: जी, सबसे पहला चीज ये रहता है कि कुछ सिम्टम्स जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति के मुंह में ऐसे छाले रहेंगे जो कि लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई इनकी चली हुई है, पूरी तरह से ठीक हुए ही नहीं है, लगातार बने हुए हैं। दूसरा इसका आकार और प्रकार, आकार प्रकार में निश्चित रूप से ये बढ़ता हुआ है और इसको टच करने पर कई बार जो रहती है ब्लीडिंग होती है। तीसरी बात है कि गले में जो है गठान का पाया जाना, इस तरह की सिम्टम्स। चौथी बात ये है कि उसका मुंह खोलने में कम होना, खाने को निकलने में दिक्कत जाना, इस तरह की जो मुंह की जो सामान्य फंक्शन या कार्य होता है वह प्रभावित होना, यदि इस तरह की चीजें यदि हो रही है तो निश्चित रूप से एक कैंसर होने की संभावना जो रहती है ऐसे केसेस में बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही करनी चाहिए कि यदि किसी प्रकार की नशा है और इस तरह के सिम्टम है तो तत्काल रूप से चिकित्सकीय परामर्श जो है लेने की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात है कि इसको हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं, ये तो सामान्य रूप से जांच की बात हो गई। इसको कंफर्म करने के लिए दो मेथड होती है। पहला एक मेथड रहता है यदि गले में गठान यदि है इस तरह के छाले के कारण से, तो उस समय FNAC या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऐसा एक टेस्ट होता है जिसमें से सुई डालकर के उस गठान से कुछ द्रव्य निकाला जाता है जिससे ये चीज साबित होता है कि इसमें कोई कैंसर तो नहीं है। दूसरा चीज छाले से बायोप्सी ले जाता है, छाले का बहुत छोटा सा भाग निकाला जाता है। आमतौर पर कई बार लोग इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं बड़ा टुकड़ा निकालेंगे या फिर हो सकता है कि इस तरह के जांच से बीमारी फैल जाए, परंतु मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये जांच अत्यंत जरूरी होती है। बिना बायोप्सी की जांच से कभी भी कोई भी सिम्टम्स चाहे वह कैंसर जैसा ही क्यों ना दिख रहा हो स्पष्ट रूप से, फिर भी उसको कैंसर नहीं माना जा सकता है। तो बायोप्सी में बहुत अत्यंत सूक्ष्म भाग जिसमें 0.5 सेंटीमीटर के लगभग का भाग जो रहता है वह निकाला जाता है और उसको जांच किया जाता है। ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन में इसका रिपोर्ट आ जाता है और ये चीज कंफर्म करती है कि वाकई में व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। बाकी जो दूसरी जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है जिसमें से CT स्कैन, MRI ये सारी चीजें हेल्प करती है, परंतु कंफर्म जो पुष्टि करने का जो कार्य है वह केवल और केवल बायोप्सी के द्वारा होता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओरल कैंसर का जो इलाज है वो कितना असरकारक होता है या कितना इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है?
0: जी हाँ, ये मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा, यदि ओरल कैंसर हो गया है तो स्टेज 1st और 2nd ये पूरी तरह से क्यूरेटिव रहता है और मरीज पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति की तरह में यह ठीक हो सकता है, परंतु स्टेज 3rd और 4th स्टेज में व्यक्ति का में चेहरे में विरूपता आ सकती है और उसको बार बार जो है फॉलोअप के लिए आना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह की बीमारी को जड़ से नष्ट करने के लिए लंबा समय हो सकता है। परंतु वर्तमान स्थिति में यदि मुंह का कैंसर यदि 4th स्टेज तक भी पहुंच गया है तो भी उसके मरीज की जीवन जो है वह लंबा कर सकते हैं, परंतु अंतर यही रहता है कि वह व्यक्ति जितना एडवांसिंग स्टेज

0: जाता है, वैसी स्थिति में वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा कंप्रोमाइज या असामान्य उनका जीवन हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि तंबाकू, गुटखा, अन्य जो मादक पदार्थ हैं, नशे की जो चीजें हैं, इसे लेना कितना हानिकारक हो सकता है और हम मुख के कैंसर से कैसे बच सकते हैं।
0: जी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो तंबाकू है, गुटखा है और अन्य नशा की चीजें जो कि क्षणिक मानव शरीर में आनंद के भाव पैदा करते हैं, परंतु जो शरीर में स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, वह निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिसमें से तंबाकू और गुटखा ये शरीर में जो कैंसर से शरीर को बचाती है, जो मिकोसा जो जिसका स्वस्थ रहना आवश्यक होता है उसको ये क्षरित करती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि नशा से दूर रहे, यदि हम नशा से दूर रहते हैं तो कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है।
1: जी जी जी, हमारा खान पान कैसा हो कि हमारा मुंह का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।
0: जी, मुंह के स्वास्थ्य को अच्छे बने रहने के लिए ये जरूरी है कि कुछ विटामिन जो है वो शरीर में अपने पौष्टिक आहार में नियमित रूप से सेवन करें, जिसमें से विटामिन ए, बी, सी और स्पेशली ई विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इन चीजों का नियमित रूप से सेवन करें तो मुंह का जो स्वास्थ्य है, ओरल स्वास्थ्य जो है वह अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो विटामिन्स हैं, ये यदि कोशिश करें कि जो हमारे जो सब्जी में है, फल में है, इनके द्वारा यदि हमारे शरीर को यदि मिलता है तो वह ज्यादा हितकर रहता है, बनस्पत ये कि हम कोई मेडिसिन वगैरह का सेवन करें। तो मुख्य रूप से अभी के जो सीजन में मटर काफी ज्यादा रहता है जिसमें से B12 की अधिकता रहती है, अभी केला वगैरह रहता है जिसमें विटामिन ए की रहती प्रचुरता रहती है, गाजर वगैरह जैसे मौसमी सब्जी है उसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जो सीजनल सब्जी है उनका उपयोग जो है अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे मुंह के से संबंधित बीमारी से अपन बच सके।
1: जी जी, तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर शैलेन गुप्ता जी से, जो कि प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को मुख के कैंसर के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप मुंह के विभिन्न रोग और ओरल कैंसर के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। आकाशवाणी,
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 14.7 MHz पर। 9 बजने को हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। धूम 3 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में अगला गीत। कौसर मुनि ने इस गीत को लिखा है।

0: जूलियस पैकियम ने इस गीत को संगीत दिया था।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
2: सुबह और शाम
0: 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ दिल ने कहा
4: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
4: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
5: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
4: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
4: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
4: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
5: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
4: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
5: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
4: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

श्रोताओं, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि दुनिया को परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाली मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना है। परमाणु परीक्षण से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका असर लंबे समय तक मनुष्य और प्रकृति पर रह सकता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोका जाए, देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं जहां परमाणु परीक्षण और उनसे होने वाले विनाश का खतरा ना हो। तो आइए आज इस दिवस पर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना और उसके लिए प्रयास करें जहां शक्ति का प्रदर्शन विनाश से नहीं बल्कि शांति, संवाद और मानवता से हो।

0: रश्मि विराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत बत किया था आर्को ने। फिल्म का नाम था सुखी और आवाज थी सचेत टंडन की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। ठिशकियाओं इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीतबद्ध किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

तेजस फिल्म से गीत सुन रहे थे आप श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में कुमार के बोल थे शाश्वत सचदेव का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं समाप्त करने की दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: छोटा ही है।
1: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
0: मुझे गलत मत समझना।
1: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
0: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
1: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
0: वाह, अच्छा शेर है। बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
1: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
0: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम पर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
1: कि मैं टूट जाऊंगा।
2: लीना, अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक घर पे ही थी और कहां थी?
1: नेहरा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
0: गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
1: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
0: उनकी गाड़ी में आएंगी, मुझे अकल मत सिखाओ।
1: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
2: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
0: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
1: हाँ हाँ।

लीना चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझ सा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर, और मस्ती मजाक भी करते थे वो, मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

राजेश खन्ना के साथ एचएस रवेल की फिल्म महबूब की मेहंदी में लीना चंदावरकर की खूबसूरती देखते ही बनती थी।

सन 1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मन चली।

0: मेलबर्न मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को।
1: विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा।
2: रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता

0: कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार देशभर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले समारोह में चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार के लिए कुल 82 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को चुना गया है। इनमें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री तथा खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बीच अब तक छत्तीसगढ़ के 9 नागरिकों की जानकारी सामने आई है। इनमें रायपुर निवासी 5 सुरक्षित हैं और वापस लौट रहे हैं, जबकि 2 नागरिकों के परिजनों से संपर्क हो गया है। लापता नागरिकों की तलाश के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। राज्य सरकार, नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है तथा प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को समाज शास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषयों की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद तीनों परीक्षाएं इस वर्ष सितंबर में फिर से आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे जिलों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा निर्मित है। इसके असर से प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित सप्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में आज से प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 10 बजे हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आपके पसंद के फिल्में गीत प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम आपके फरमाइश में 10:30 पर। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम हम लेकर आएंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर शाही महिलाएं अपना कार्यक्रम वनिता विहार सुनेंगी।

में आपस की बात का विषय है। मृत्यु के बाद भी अमर रहेगी दृष्टि, जब नेत्रदान से रोशन होगी किसी की सृष्टि। चर्चा का विषय देश के विकास और स्वास्थ्य का पैमाना, खेल, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। क्रम फरमाइशी गीत और चर्चा का विषय भूकंप जैसी आपदा में जागरूकता ही पहला बचाव है। फिल्म संगीत का समय होगा शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 का। शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। 9 बजे से 10 बजे तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ। कार्यक्रम विविध संगीत हम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्रनाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत

0: हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 14.7 MHz पर 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत जुबिन नौटियाल युहानी और मामे खां के गाए इस गीत से, जिसे लिखा है शैली ने और अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया है।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और ये जो गीत अभी आपने सुना इसमें आवाज़ें थीं जुबिन नौटियाल और पायल देव की। कुणाल वर्मा का लिखा गीत था, पायल देव का संगीत। अगला गीत मीर का लिखा हुआ है, स्टीवन बेन की आवाज़ है, हरीश सघाने का संगीत।

अरिजीत सिंह के स्वर में रश्मि बिराग का लिखा गीत अभी आपने सुना। इसे संगीतबद्ध किया था पीयूष शंकर ने। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दोस्तों स्वीकारिए हमारा नमस्कार। आपके फरमाइशों पत्रों और खुशियों के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सुनते हैं अपने पसंद के फिल्मी गीत जो आप सभी ने हमें ईमेल के माध्यम से और पत्र के माध्यम से हम तक फरमाइश के रूप में भेजे हैं। तो ये कार्यक्रम का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आपको सुनवाते हैं मंजिल फिल्म का गीत आप सबकी ही पसंद पर, किशोर कुमार के स्वर में, योगेश का लिखा, राहुल देव बर्मन के संगीत पर। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें, गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता, ताजपुर मोरवा से कारी रॉय, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, मध्य प्रदेश इंदौर से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, नारायण भाऊ खर्चे, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा भाटापारा दतरंगी से इन्होंने हमें पत्र लिखा था। और ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नेहावरकर, निर्मला नेहावरकर और विशाल नेहावरकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर, नांदघाट कातल बोर्ड से भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। इन सभी की पसंद पर मंजिल फिल्म का गीत सुनिए।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आपकी चाय, EMI, किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
6: कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ से, और अगला गीत बेमिसाल फिल्म का। सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर के स्वर में ये दो गाना है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, राहुल देव बर्मन के संगीत पर। पसंद करता हमारे श्रोता हैं इंदिरा नगर रायगढ़ से, शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम और राजा। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी। हरदीव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक हमें गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्र लिखते हैं। ईमेल भेजने वाले श्रोता बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम आदिबा, दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामीन देव साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत अब आप सुनेंगे मोम की गुड़िया फिल्म से आनंद बख्शी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। आनंद बख्शी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता श्री श्रृंगेरी श्री महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा रिगनी छत्तीसगढ़ से, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतलदास, सुशीला साहित्य, मनोज मुकेश और अंकित साहित्य, राज शर्मा, अमीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा आदर्श नगर मलूट पंजाब से पत्र लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू, सत्यम साहू, शिवम साहू, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरुशब्द सिंह राहुल।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, अगर आप भी अपने पसंद के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें अपना फरमाइशी पत्र इस पते पर ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी रायगढ़ और पिन कोड 496001।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये शीर्षक गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वर में। फैज़ अनवर का लिखा ये गीत नदीम श्रवण के संगीत पर है और इसे सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, मनोज कुमार यादव, सोनम, विशाल, ज्योति, साक्षी, राधी और रामलाल यादव, राजीव गांधी नगर, राजीव गांधी चौक, रायगढ़ के हमारे श्रोता हैं। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्श बाबू और अर्शलान बाबू सिराजपुर गणेशपुर से। ईमेल भेजते हैं नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू, अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू और मोनिशा साहू, जिला बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से संदीप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह।

दिल है कि मानता नहीं, फिल्म के इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 107.7 MHz पर 11 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की सृजन भारती गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है। सृजन भारती के इस आयोजन में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने माने फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्म जी और गायिका दीपाली सहाय को। इन दोनों अतिथियों का विविध भारती परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख संतोष जाधव जी ने और इंजीनियरिंग हेड सोपान ताइडे जी ने। एडीपी अनुश्री पाठक और एडीपी तेजश्री कांबले और प्रोड्यूसर जुबैर खान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। संचालन आपकी इस रेडियो सखी ममता ने किया। तो अब माइक उद्घोषक यूनुस खान को सौंप रही हूँ। शैलेंद्र के गीतों और जीवन की अनमोल कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यूनुस खान। तो आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का।
2: इस बार सृजन भारती करने की वजह यह है कि 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतकारी पर बहुत गहरा असर डाला है। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र का जन्म हुआ था और बहुत छोटी जिंदगी शैलेंद्र को मिली, 30 अगस्त 1923 से 14 दिसंबर 1966 तक। 14 दिसंबर जिस दिन

इंद्र इस दुनिया से गए वो राज कपूर का जन्मदिन होता है और राज कपूर अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे तब ये खबर आई कि शैलेंद्र नहीं रहे हैं। ये राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जरा ये देखिए कि तकरीबन उनकी जो जिंदगी थी वो 43 साल की जिंदगी थी और इन 43 साल में जो गीत यात्रा थी वो 1949 से 1966 तक यानी तकरीबन 17 साल की, लेकिन इतने सारे गाने शैलेंद्र और इतने बेमिसाल गाने शैलेंद्र हमें दे गए हैं कि ये लगता है कि शैलेंद्र ने बहुत लंबी जिंदगी जी। वो जो आनंद का डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, मुझे लगता है ये शैलेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। 17 साल में इतने गाने और इतने अनमोल गाने, इतने कल्ट गाने, ऐसे गाने जिनमें कहीं अपने समाज की झलक दिखती है, कहीं राजनीति की झलक दिखती है, रोमांस है, दर्शन है, जीवन का फलसफा है, सुख दुख, हास्य, कौन सा ऐसा विषय है जो शैलेंद्र के गानों में नहीं है। मुझे लगता है कि 43 साल कितना छोटा समय होता है एक व्यक्ति के लिए। तकरीबन 40 की उम्र में तो इंसान समझदार बनना शुरू होता है, उसे जिंदगी की समझ आती है और तब तक शैलेंद्र निकल लिए। ये जो एक घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में आप ये पाएंगे कि कितना बड़ा गीतकार था ये बंदा। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र पैदा हुए और तकरीबन 40 के दशक की बात है। राज कपूर ने शैलेंद्र को एक कवि सम्मेलन में सुना था और इस कवि सम्मेलन में शैलेंद्र अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब। और रेलवे में वो मैकेनिक थे और झांसी में उनकी नौकरी लगी थी और मुंबई उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई आने के बाद वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और उसके अलावा मुंबई कॉयर ऑर्केस्ट्रा, जहां सलील चौधरी हुआ करते थे, तो वो जो पूरी प्रोग्रेसिव दुनिया है उसमें बहुत एक्टिव थे। इप्टा में बहुत ही एक्टिव थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और उनके जनगीत बहुत शानदार तरीके से वहां गाए जाते थे। आपको याद होगा कि सलील चौधरी ने उनका एक जनगीत कंपोज किया था उसी जमाने में, जो बॉम्बे कॉयर गाया करता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये ऐसा गीत है जो जोश ला देता है और इप्टा में ये गाना पूरे देश में खूब गाया जाता है। और इसके अलावा हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी शैलेंद्र की रचना है। हुआ यूं कि राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि आपको आग के गाने लिखने हैं और शैलेंद्र ने पूरी तरह से ठुकरा दिया कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। फिल्मों में लिखने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया। शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और झांसी में वो मौजूद थी और उन तक भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी देखभाल के पैसे नहीं थे और बहुत जरूरी तौर पर उन्हें पैसे भेजने थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पैसे कहां से जुटाए जाएं, तो वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 500 रुपए चाहिए। राज कपूर के ऑफिस में उस वक्त 500 रुपए थे नहीं, उन्होंने घर से मंगाए और शैलेंद्र को 500 रुपए दिए, लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़े दिन बाद कहीं से पैसे आए, शैलेंद्र वो पैसे लौटाने के लिए गए, तब राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे कोई सूदखोर महाजन समझ रखा है कि जब चाहे तुम मुझसे उधार ले लोगे और जब चाहे वापस कर दोगे, तुम्हें मेरे लिए गाने लिखने ही पड़ेंगे। तब राज कपूर के जोर देने पर शैलेंद्र ने बरसात के दो गाने लिखे, एक तो बरसात का टाइटल गीत। और यहां एक बहुत जरूरी बात यह कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी जब मायके में थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। शैलेंद्र ने शकुंतला जी की चिट्ठी में लिखी हुई इस लाइन को एक गाने में बदल दिया। ये गाना सुनते हैं।

बरसात में उन्होंने जो दूसरा गाना लिखा वो था पतली कमर है तिरछी नजर है, वहां वो लिखते हैं मौसम के साथ जो बदलता जाए आदमी वही है जो चलता जाए, एक तरह से वो उस जमाने का आइटम सॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी वो जिंदगी का एक फलसफा देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 1953 में 2 बीघा जमीन बन रही थी, बिमल रॉय प्रोडक्शन एक तरह से अपनी शुरुआत कर रहा था बॉम्बे में। बिमल रॉय अपने सारे साथियों के साथ जब वहाँ आए थे, उन्होंने बॉम्बे में बाइसाइकिल थीफ देखी, फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल था वहाँ पर उन्होंने देखी, तो बस से वो लौट रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें सलील चौधरी थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, नवेंदु घोष थे, और बिमल रॉय ने कहा कि हमारे देश में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और इस तरह से सलील चौधरी की कहानी पर 2 बीघा जमीन फिल्म बनी, और उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी, और इस फिल्म में शैलेंद्र ने एक बहुत ही बेमिसाल गाना लिखा था जो उम्मीद का गाना है। ये गाना कहता है, तेरी राह में कलियों ने नैन बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, नीला अंबर मुस्काए हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले भाई। ये शैलेंद्र थे।

दो बीघा जमीन का ये गाना कितना कल्ट गाना है ये आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र की असली यात्रा जो शुरू होती है राज कपूर के साथ, वो आवारा के साथ शुरू होती है। एक दिन ये हुआ कि शैलेंद्र अपने रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तब राज कपूर की गाड़ी आई और राज कपूर लगभग उन्हें घसीटते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर ले गए और ख्वाजा अहमद अब्बास ने तकरीबन 2.5 घंटे का नरेशन किया। और 2.5 घंटे का एक फिल्म का नरेशन करने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि कविराज क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइन में ये जो 2.5 घंटे का नरेशन है उसको पिरो दिया। उन्होंने कहा, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। इतने तपाक से उन्होंने ये बोला, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। राज कपूर क्यों शैलेंद्र को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी वजहें थी कि इतने कमाल के गाने और ऐसे फलसफा अपने गाने में उतार देना। ये शैलेंद्र भले फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भीतर जो गीतकार था वो बहुत ही कमाल का गीतकार था। और जब वो सिनेमा में आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए। ये गाना सुनते हैं।

ये जो आवारा का गाना है, ये चाइना, टर्की, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि जापान और तमाम देशों में ये गाना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और अभी तो साउथ कोरिया से भी इस गाने के वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पर इस गाने को सब लोग गाते हैं। उज़्बेकिस्तान के एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं बोबुमुरोव हमदानोव राज कपूर के गाने गाते रहे हैं और उज़्बेक सिंगर थे, लेकिन वो जिस अंदाज में गाते हैं, अब सोचिए कि इन लोगों की भाषा नहीं है ये, लेकिन जिस अंदाज में, जिस

के साथ, जिस जोश के साथ गा रहे हैं। बबू रॉय के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवारा का वीडियो, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आवारा के बाद श्री 420 आती है, और श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी की सबसे ज्यादा नायाब फिल्मों में से एक है। श्री 420 का जो सबसे मशहूर गाना है वो है मेरा जूता है जापानी। सन 1955 का जमाना था, भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था, और भारत एक तरह से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन रईस लोगों में चलन ये था कि जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी रूसी। तो शैलेंद्र ने इस पर एक तंज मारा था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो बाहर का सामान इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे थे। तो अमूमन हम इस गाने को तंज के रूप में नहीं देखते, लेकिन ये बाकायदा एक तंज है। और इस गाने में जो सबसे दिलचस्प अंतरा है वो है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। यानी ये वो देश है जहां एक आम आदमी भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है।

इस गाने में एक और बहुत ही शानदार लाइन शैलेंद्र लिखते हैं कि बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। इतनी आम भाषा में शैलेंद्र ऐसा फलसफा दे जाएंगे, ये उनकी कलाबाजी है जो वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिर्फ राज कपूर के लिए ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, देव आनंद के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। और यहाँ जो गाना अब मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये गाना देखने का गाना ज्यादा है। इस गाने में शैलेंद्र अनियोक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। ये गाना पूरी तरह से ऊपर वाले के लिए लिखा गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात कही जा रही है, पर सुनने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऊपर वाले की नहीं, ऊपर वाली की बात हो रही है। ये गाना दिखाइए।

जरा सोचिए कि माँ बाप को वो वहीदा रहमान ये बता रही है कि ऊपर वाले की बात कर रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है। तो ये कितना कमाल है। अमूमन हम सुन लेते हैं गाना, लेकिन सिचुएशन पर इस तरह से लिखना और वो भी धुन पर लिखना, ये बहुत नायाब गाना है, बहुत अद्भुत गाना है। अमूमन हमारा ध्यान नहीं होता इस बात पर। अब एक गाने की कहानी। एक बार ये हुआ कि एसडी वर्मन ने शैलेंद्र को एक सिचुएशन दी और कहा कि इस पर तुमको गाना लिखना है। अब काफी टाइम हो गया शैलेंद्र ने गाना लिखा ही नहीं, तो एसडी वर्मन को गुस्सा आया। उन्होंने आरडी वर्मन को भेजा कि जब तक शैलेंद्र गाना ना दे तुम वापस मत लौटना। अब ये हुआ कि शैलेंद्र के पास पंचम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में जा रहा हूं। तो वो पंचम को लेके शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में चले गए। अब वहां पर जयकिशन को ये लगा कि यार ये दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा इधर क्या जासूसी करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा तुम यहां पर क्यों आया भाई। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शैलेंद्र, क्योंकि क्या होता है कि काम चल रहा होता है वो सीक्रेट होता है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं शैलेंद्र जी गाना नहीं दे रहे हैं तो मैं इसलिए उनके साथ आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो वो मेरा गाना लिख रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो। तो जयकिशन थोड़ा भड़क गए थे। शैलेंद्र ने जयकिशन का काम पूरा किया और अब पंचम ने कहा मुझे गाना दीजिए ना, नहीं तो

बापू बहुत मारेंगे, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नेशनल पार्क चलते हैं। तो जुहू से ये लोग गाड़ी से नेशनल पार्क आ गए। शैलेंद्र जो है नेशनल पार्क में इधर उधर टहलते रहे, सिगरेट विगरेट पीते रहे, सोचते रहे, तो बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं कि चलो चलते हैं जुहू बीच की तरफ। तो नेशनल पार्क से वो उनको ले गए जुहू बीच की तरफ। अब पूनम की रात थी, जुहू बीच पर शैलेंद्र बैठे हुए थे और पंचम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है। तो पंचम घबरा गए कि इनको कैसे पता चला कि मैं स्मोक करता हूं। तो उनको लगा ये क्या है। तो उन्होंने माचिस दी और माचिस पर उन्होंने ट्यून बजा के बताई। और जब ट्यून बजा के बताई तो शैलेंद्र ने वहीं जुहू बीच पर पूनम की रात में दो लाइनें लिखी और कहा कि जाओ अंतरे तुमको बाद में मिल जाएंगे। वो दो लाइनें थी, खोया खोया चांद खिला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। अब जरा सोचिए कि खोया खोया चांद तीन ही वर्ड्स हैं, है ना, खुला आसमान दो ही वर्ड हैं, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको, मस्ती भरी हवा जो चली, ये जो कमाल है ये। और सिचुएशन जब पता चलती है तो गाना सुनना जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।

0: खोया जा।
1: तो भाई ये शैलेंद्र के गानों की कहानियां हैं। बम्बई जब शैलेंद्र आए तो वो माटुंगा में वर्कशॉप में काम करते थे और परेल में रेलवे के एक छोटे से दड़बे नुमा क्वार्टर में रहते थे। उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ख्वाब था कि इस बम्बई शहर में अपना एक घर होना चाहिए और अरब सागर के किनारे बसा आसमान छूता शहर बम्बई, और ये शहर जो कि सिकुड़ कर जीता है, कम जगहों में जीने की आदत है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर, पुलों पर, टैक्सी में, मैदानों में, रेलवे स्टेशनों में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाते हैं। शैलेंद्र का ये ख्वाब पूरा हुआ था 1960s के ज़माने में, अपना घर बनाने का ख्वाब। 1960 में उन्होंने लिंकिंग रोड बैंड्रा में अपना एक घर बनाया, बंगलो बनाया, वो आज भी मौजूद है। अगर आप लिंकिंग रोड पर जाते हैं तो वहाँ एक शैलेंद्र चौक है, शैलेंद्र चौक वाली गली में अंदर जाएं तो आपको रिमझिम मिलेगा। पिछले हफ्ते ही मैं वहाँ जाके माथा टेक के आया। रिमझिम, वहाँ लिखा है शंकर शैलेंद्र और लिखा है रिमझिम। रिमझिम इसलिए क्योंकि बारिश ने उनका करियर बनाया, बरसात फिल्म ने, और बारिश उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले का नाम रिमझिम रखा हुआ है। बहुत जर्जर हालत में मौजूद है, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत बेमिसाल जगह है। इसके अलावा शैलेंद्र ने अपने काम करने के लिए सांताक्रूज में एक फ्लैट और लिया था जिसको बापू निवास कहा जाता था। ये जो बापू निवास है ये बड़ी करामाती जगह थी क्योंकि यहाँ एक तरफ गुलजार मौजूद होते थे, दूसरी तरफ देबू मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, मतलब ये एक तरह से घेटो था। और गुलजार साहब ने कहीं लिखा है कि बापू निवास जाओ तो पता चलता है कि कोने में बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के टोटे हैं, अंडरवियर्स और टॉवल्स सूख रही हैं। हर आदमी वहां जा सकता है, हर आदमी वहां रह सकता है और किसी के आने पर कोई रोक नहीं है। इतनी भब्बड़ के बीच थोड़ी देर वक्त निकाल के शैलेंद्र अपने गाने वहां पर लिखा करते थे। बापू निवास में शैलेंद्र ने अपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, ये जगह आज भी मौजूद है, हालांकि अब ये शैलेंद्र के पास नहीं है। एक कमरा, किचन और बरामदे वाला ये घर बापू निवास। घर का जो ख्वाब है उस पर शैलेंद्र ने एक बहुत ही क्यूट और स्वीट गाना लिखा है, वो सुनते हैं।

गाना जो है हम सबके ख्वाबों का गाना है, घर के ख्वाब का गाना है। शैलेंद्र का एक और रंग आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं। 1960 में एक फिल्म आई थी, बप्पी सोनी की फिल्म थी।

0: फूल चार काटे, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान थी। इसका जो बहुत ही मशहूर गाना है वो है मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, वो भी शैलेंद्र ने लिखा है। लेकिन इस फिल्म में एक सरप्राइज गीत था, एक सिचुएशन ऐसी आई जहां शैलेंद्र से कहा गया कि आपको पूरी तरह से अंग्रेजी गाना लिखना है। उस जमाने में बॉम्बे में रॉक एंड रोल और जैज का बहुत चलन था, और साउथ बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जहां जैज हुआ करता था, लाइव जैज हुआ करता था। तो एक नेवी में काम करने वाले व्यक्ति होते थे सरदार जी, उनका नाम था इकबाल सिंह सेठी। इकबाल सिंह ब्रिटिश इंडियन नेवी में काम करते थे, और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें गोरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को एल्विस पसंद था, तो उन्होंने एल्विस को अपना लिया और एल्विस की स्टाइल में गाना गाने लगे। जब इकबाल सिंह सेठी को शैलेंद्र का लिखा अंग्रेजी गाना गाने को कहा गया, उन्होंने गा लिया, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी की इजाजत तो थी नहीं, तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा कि भाई आपने ऐसे बिना इजाजत के फिल्म में काम कैसे कर लिया। लेकिन ये जो गाना है ये है ओ ब्यूटीफुल बेब ऑफ ब्रॉडवे, रॉक एंड राइट ओवर माय हार्ट, यू हैव सेट मी अ फायर एनीवे, यू आर टू गुड इन योर आर्ट। ये शैलेंद्र ने अंग्रेजी गाना लिखा है।
1: A beautiful baby of Broadway, rock right on my heart. You set me for any way, you're too good in your heart. Don't wanna miss you, life without you, don't think of it, oh my shoes you,
0: ये अंग्रेजी गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ। शैलेंद्र ने बहुत मजा किया, गाने भी लिखे हैं और ये अंग्रेजी गाना भी उनका एक कमाल है। बल्कि एक गाना है अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, उसमें वो अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। वो गाना आज मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, पर उसको आप कभी सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, इन तमाम भाषाओं के सेंटेंसेस आते हैं। एक बार ये हुआ कि शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का अपना आपस में एक वादा था कि हम साथ काम करेंगे, हमेशा एक साथ काम करेंगे, जब भी हमें कोई फिल्में मिलेंगी तो गाने आप लिखोगे और ये एक हमारी टोली जो है हम उसको हमेशा निभाएंगे। लेकिन एक फिल्म आई कॉलेज गर्ल, जिसमें पता नहीं क्या वजह थी कि शैलेंद्र की बजाय शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कृष्ण को साइन कर लिया। अब शैलेंद्र बहुत गुस्सा हुए कि भाई ये वादा खिलाफी हो गई और मेरी बजाय किसी और से लिखवा लिया, तो वो बहुत नाराज हो गए। और एक रेस्टोरेंट में उन्होंने देखा कि शंकर जयकिशन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, और बैरे से कहा कि जाओ उसको दे आओ। तो ये नाराजगी थी और शंकर जयकिशन ने इसे एक गाने में बदल दिया, प्रॉपर गाने में बदल दिया। तो आम जिंदगी की ये घटना जो है ये रंगोली के गाने में बदल गई। ये गाना सुनिए।

0: दुनिया।
1: और अब शैलेंद्र और नवकेतन की सबसे बड़ी फिल्म गाइड की बात करते हैं। गाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब गाइड फिल्म बन रही थी तो उसके लिए गीतकार के तौर पर हसरत जयपुरी को चुना गया था, और हसरत जयपुरी ने एक दो गाने लिखे भी थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोल दिया था इस फिल्म के हीरो के बारे में जिसका यहाँ जिक्र करना या उसे बोलना बहुत अशालीनता हो जाएगी, तो उनको फिल्म से निकाल बाहर कर दिया गया था। और शैलेंद्र जी के पास गए थे विजय आनंद और देवानंद, और उन्होंने कहा कि आपको गाइड फिल्म के गाने लिखने, तो उन्होंने कहा सिंस आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस मैं डबल पैसे लूंगा, और उन्होंने डबल फीस चार्ज की थी। लेकिन गाइड के जो गाने उन्होंने लिखे हैं, एक एक गाना इतना कमाल है। सबसे पहले मैं मुसाफिर जाएगा कहां की बात करना चाहता हूं। अगर आपने गाइड फिल्म देखी हो तो इंटरमिशन के भी एक घंटे बाद एक दृश्य आता है जहां रोजी जेल में राजू बंद है और उससे मिलने जाती है, और वहां वो ये कहती है कि राजू तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा, काश मैं तुमको बचा पाती। और कोई बात नहीं, ये वक्त बीत जाएगा और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तो राजू जेल की सलाखों को पकड़ता है और कहता है हाँ रोजी, नए सिरे से शुरू करेंगे जीवन। मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से शैलेंद्र ने इस गाने को उगाया था, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। मुझे ये लगता है कि वहीं राजू ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी

पानी जिंदगी में नहीं लौटना है, उसे ना तो रोजी के पास लौटना है, ना अपने घर, अपने गांव, अपनी माँ के पास लौटना है। और जब वो जेल से छूटता है, और उसके बाद अगर आप इस गाने को देखें, गाइड फिल्म शुरू इस गाने से होती है, और जब आप देखें तो सबसे पहले राजू का सूटकेस गिरता है, रोजी की तस्वीरें गिरती हैं, उसके सूटकेस छूट जाता है, उसके बाद चप्पल छूट जाती है, उसके बाद कपड़े छूट जाते हैं, फिर वो कभी किसी बस में लटक के जाता है, कभी किसी ट्रक पर जाता है, और फिर एक जगह थक के लेटा हुआ होता है और एक साधु उसको रामनामी चादर ओढ़ा देता है और वहां से वो साधु मान लिया जाता है, और फिर जो गाइड का कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि एसडी बर्मन ने एक बांग्ला गाना बनाया था, दूर कौन पारो बाशे तुम्ही चोलो जाइबारे कोबे आईबारे। ये जो गाना है इसको यूट्यूब पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। इसी ट्यून पर मुसाफिर जाएगा कहां बनाया गया था। और अगर आप रिकॉर्ड पर गाना सुनते हैं तो एक अंतरा अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन वो वर्जन मौजूद है और ढूंढने पर वो मिल जाएगा, जिसको जावेद साहब कहते हैं कि शैलेंद्र का लिखा सबसे नायाब अंतरा है इस गाने का। वो है, तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां, क्यों नाचे सपेरा। क्या जुमला है, देखिए आप क्या शानदार जुमला है, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां। ये गाना जिंदगी की क्षणभंगुरता, रिश्तों के खोखलेपन, समाज और संसार की सच्चाइयों को उजागर करता है। इसका एक अंश सुनते हैं।

गाना, और अब गाइड के और भी दूसरे गानों की बात करना चाहते हैं। गाइड फिल्म एक महिला की आजादी और अपनी जिंदगी को चुनने वाली फिल्म है। और अमूमन क्या होता है कि फिल्मी गानों में पहले मुखड़ा आता है और उसके बाद फिर अंतरा आता है, लेकिन गाइड का एक गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने में पहले अंतरा आता है और बाद में मुखड़ा आता है, ये प्रयोग शैलेंद्र ने किया था। और हुआ ये था कि देवानंद शूटिंग के लिए जयपुर चले गए और उन्होंने एसडी बर्मन से कहा कि गाना जल्दी भेजिएगा। तो एसडी बर्मन ने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा थीम सॉन्ग बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन देवानंद इससे खुश नहीं थे, विजय आनंद भी खुश नहीं थे, हालांकि यूनिट के लोग इस गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि चूंकि हम लोग चित्तौड़ आए हुए हैं तो इस गाने को शूट कर लेते हैं, एडिट पे नहीं अच्छा लगा तो उड़ा देंगे। जरा सोचिए कि इस गाने को लगभग उड़ा दिया गया था, लेकिन जब वो गाना शूट हुआ तो यूनिट सुबह शाम गा रही है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और तब देव को लगा कि ये गाना बहुत कमाल का गाना हो सकता है और उन्होंने इस गाने को रखा फिल्म में। और जिंदगी की उलझनों और जिंदगी की ठोकरों में फंसी एक महिला की आजाद उड़ान का गाना है। इस गाने से पहले के डायलॉग आपको याद है, देव कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की एक औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती हैं 16 साल की एक बच्ची, भोली, नादान, शरारत से भरपूर। और कट गाना शुरू होता है, वो ट्रक में जा रहे हैं और वो मटका फोड़ती है, और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग ऑफ सिनेमा, कमाल गाना है।

गाइड ऐसी फिल्म है जिसमें दो और भी कमाल के गाने हैं। बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म में आते हैं, मुंह से छल किए जा और क्या से क्या हो गया। एक ही ट्यून और दो गाने। एस डी बर्मन ने यह सोचा था कि एक ही ट्यून पर दोनों

गाने आएंगे बैक टू बैक आते हैं, जब वो मोसे छल किए जा होता है और मोसे छल किए जा जैसे खत्म होता है तो वो सलाखें और जाल और देव उस जाल में फंसे हुए हैं और वहां पर क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। एक ही ट्यून पर दोनों गाने हैं और वो भी दोनों गाने बहुत ही कमाल के गाने हैं। लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प किस्सा शैलेंद्र के गानों के बनने का हुआ ये था कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लेख टंडन एक दिन फेमस तारदेव में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, तकरीबन 100 साजिंदे तैयार थे, रिहर्सल हो चुकी थी और लता जी के आते ही गाना रिकॉर्ड हो जाना था। लेकिन तभी स्टूडियो में राज कपूर का फोन बजा और राज कपूर ने जयकिशन को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ कि कविराज ने कौन सा गाना लिखा है। अब ये हुआ कि उन्होंने फोन पर ही पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना सुना, वो गाना था काटे न कटे रैना, और जैसे ही गाना खत्म हुआ उन्होंने कहा ये गाना मुझे दे दो, इस गाने पर मेरा हक है, तुम लोग दूसरा लिख लो। अब गाना नहीं है और लता मंगेशकर आने वाली हैं। अब लेख टंडन की हवाइयां उड़ रही थी कि लता जी आएंगी तो क्या करेंगे। लता जी आई भी और फिर ये कहा गया कि भाई गाना तो था लेकिन अब नहीं है, अब गाना लिखना पड़ेगा। तो लता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे गाने रिकॉर्ड करके आती हूँ, तब तक आप लोग गाना लिख लो। अब ये हुआ कि शैलेंद्र को लेख टंडन लेके गए आरे कॉलोनी, वहां उनको खाना दिया और कहा कि भाई यहाँ लिखो, तो उन्होंने खाना खा लिया लेकिन गाना नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नेशनल पार्क चलते हैं, नेशनल पार्क में घूमे, वहां पर भी गाना नहीं हुआ। अब लेख टंडन को लगा कि आज मर गए, क्योंकि लता जी जब आएंगी और दोबारा गाना नहीं है तो क्या होगा हमारा। तो जब वापस लौटे तो देखा लता जी की कार स्टूडियो के बाहर खड़ी है, तो लेख टंडन कहीं जाके छिप गए। उन्होंने कहा अब तुम ही सामना करो, मैं तो भाई इस मामले में नहीं पड़ूंगा। तो लेख टंडन छुप के देख रहे थे कि स्टूडियो के केबिन में शैलेंद्र लता जी के पास गए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। लेख टंडन को ये लगा कि शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि मेरे से गाना हुआ नहीं और मैं ये गाना बाद में लिख दूंगा और लता जी की डांट खाएंगे। पर जब उन्होंने स्पीकर का PFL दबा के सुना कि अंदर बात क्या हो रही है, तो लता जी की आवाज आई, दो ही अंतरे होंगे ना शैलेंद्र जी, यानी लता जी के सामने बैठ के उन्होंने एक झटके में गाना लिख दिया वहां पर, और ये गाना था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी।

जरा सोचिए कि ये गाना जो शैलेंद्र ने एक झटके में ऐसे लिख दिया जैसे कहीं से याद करके आए हों, इस गाने की जो अंतरे हैं वो क्या कमाल हैं। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, ये एक अंतरा है। दूसरा अंतरा है जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, और ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी गागर में सागर का पानी। इतने जोरदार तरीके वाला गाना और ऐसे एक झटके में लिख दिया, ये शैलेंद्र की बहुत बड़ी खासियत है। और जरा सोचिए कि जो पीछे की कहानी है ये इन गानों को ज्यादा नायाब बनाती है, और शैलेंद्र की जो लफ्जों की कारीगरी है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से उभारती है। 1948 में जब राज कपूर आग बना रहे थे तो इंदर राज आनंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम रखा गया था घरौंदा। राज कपूर ने तय किया था कि इसे वो बनाएंगे नरगिस के साथ, लेकिन वो हो नहीं सका। और बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों को ऑफर किया, देवानंद को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। उत्तम कुमार को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया। राजेंद्र कुमार राजी हुए, नरगिस की जगह पर वैजयंती माला आई और घरौंदा की बजाय इस फिल्म का नाम रखा गया संगम। संगम राज कपूर की बहुत बड़ी फिल्म, दो इंटरवल वाले इसके वर्जन होते थे। और अभी पीछे जब राज कपूर फेस्टिवल NFAI ने किया था तो दो इंटरवल वाला वर्जन रिलीज किया गया था और वो हमें टॉकीज में देखने मिला था। क्या कमाल की ये फिल्म है। और जरा सोचिए कि इस फिल्म में शैलेंद्र, यहाँ जो पक्ष है अब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शैलेंद्र के भीतर बैठा एक स्त्री मन। शैलेंद्र एक महिला की व्यथा को बहुत खूबसूरती से गानों में उतारते रहे, और तीन गानों की मैं बात करूंगा जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाते हैं। इस फिल्म में एक गाना है ओ मेरे सनम। ओ मेरे सनम जो है वो एक ऐसा गाना है जो एक स्त्री जिस पर उसके पति को शक है, फिल्म के क्लाइमेक्स में जब ये गाना हो रहा होता है तो ये गाना जैसे अपनी सारी बातें कहता है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम, ओ मेरे सनम। और यहाँ शैलेंद्र आगे लिखते हैं कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम। ये शैलेंद्र का एक स्त्री मन है।

शैलेंद्र की स्त्री मन की बात हो रही है। कुछ और गानों का जिक्र करते हैं। जागते रहो के एक गाने में वो एक स्त्री की तमन्नाओं को लिखते हैं। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, प्याज खिड़की खुली मत छोड़ो, ये गाना। और दूसरी तरफ एक और गाना है जिसमें कहते हैं कि एक सुख पाया मैंने सौ दुख सह के, ये भी कितनी सुंदर लाइन है। और इसी तरह से बंदिनी के एक गाने में वो लिखते हैं कि मैं तो पंछी पिंजरे की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात रे सागर, कैसे चलूं उस पार। ये क्या कमाल का गाना है। ओ पंछी प्यारे सांसकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। पर एक ऐसा गाना है जो इन तमाम गानों पर भारी है और ये फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, जिसका गाना है अजीब दास्तां है ये। इस गाने का बैकग्राउंड ये है कि हीरोइन जो है वो नर्स है मीना कुमारी, और अचानक वो ये पाती हैं कि डॉक्टर साहब कश्मीर गए तो उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है और शादी की पार्टी हो रही है। मीना कुमारी की तो सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और वहां पर वो ये गाना गाती है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म।

एक और गाना जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाता है, और वो गाना है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का गाना। इस फिल्म में ये है कि जो पति है उसकी मृत्यु होने वाली है, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, और पत्नी के दिल के भीतर तूफान मचा हुआ है, और वहां वो गाती है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की रहना। वहां वो लाइन जो है, शैलेंद्र ने अल्फाज का खेल किया है, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे, जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। ये शैलेंद्र हैं।

1964 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हो रहा था तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड साहिर लुधियानवी को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये अवार्ड उन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया के लिए दिया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि साहिर मंच पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस अवार्ड के सच्चे हकदार शैलेंद्र हैं, जिन्होंने बंदिनी के लिए मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे जैसा गाना लिखा है। और साहिर ने ये कहा कि सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीत

0: इतना सुंदर गाया दीपाली ने, हर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर। अब हम मधुमति की तरफ बढ़ रहे हैं। मधुमति बिमल रॉय, सलील चौधरी और शैलेंद्र की टीम का एक कमाल थी, और इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे किस्से हैं, जैसे सुहाना सफर और मौसम हसी गाना बन रहा था तो सलीलदा और शैलेंद्र खंडाला घाट पर घूमने चले गए थे। वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए यूं कर रहा था, हुर्र। और आप ये देखिए कि सुहाना सफर गाना इसी तरह से शुरू होता है, उन्होंने ये हुर्र हुर्र जो है उसमें रख लिया था। इसी तरह से आजा रे परदेसी एक और कमाल का गाना है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मतलब शैलेंद्र कैसे छोटी छोटी सूक्तियां दे देते हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये गाना फिल्म जागते रहो के बैकग्राउंड म्यूजिक में बजी एक ट्यून से आता है। जागते रहो के बैकग्राउंड में ये ट्यून आती है और सलीलदा और शैलेंद्र को ये ट्यून बहुत पसंद थी, तो शैलेंद्र के इसरार पर ये गाना मधुमति के लिए बनाया गया था उस ट्यून को लेके। और इस फिल्म का जो सबसे शानदार गाना है वो बिछुआ है। सलील चौधरी ने बचपन में असम में कुलियों को ये गाना गाते हुए सुना था, और जब सलीलदा ने ये धुन शैलेंद्र को सुनाई तो अनायास ही शैलेंद्र के मुंह से ये बात निकली, हो बिछुआ। और आप सोचिए कि ये जो गाना है इसमें एक पूरी कहानी है, प्रॉपर एक कहानी आती है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये गाना फोक से आता है, पर सच ये है कि ये शैलेंद्र का रचा हुआ फोक सॉन्ग है। जिस तरह की पैकेजिंग, जिस तरह की इसमें पूरी एक कहानी चलती है, वो बहुत ही कमाल की बात है।
1: मंत्र फेरूं

और अब उस फिल्म की बात जो शैलेंद्र ने बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ एक और बात बताएं कि परख के सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि डायलॉग भी शैलेंद्र ने लिखे थे, और ये एक इकलौती फिल्म है जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे। बिमल रॉय की यूनिट के तमाम लोग खाली वक्त में गप्पे मारते थे, और इसमें नबिंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, रघुनाथ झालानी वगैरह होते थे। उसी दौर में मोहन राकेश ने एक किताब छापी थी, 5 लंबी कहानियां, जिसमें एक कहानी

ये थी फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनके मन में ये भूत चढ़ गया कि उन्हें तो ये फिल्म बनानी है। राज कपूर ने उन्हें ये समझाया कि देखो कविराज, ये आपके बस का काम नहीं है, फिल्म आप मुझे बनाने दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ। पर शैलेंद्र नहीं माने और उन्हें वो फिल्म बनानी ही थी। पर इस फिल्म को बनाने का जो सफर है वो बहुत डिफिकल्ट रहा। जो प्रोडक्शन मैनेजर्स थे उन्होंने बहुत स्कैम किया और अनायास बिना बात के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। फिल्म बनने में बहुत देर हुई, ओवर बजट हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए। कहते ये हैं कि शैलेंद्र का बहुत दिल टूट गया था इस फिल्म को बना के। हालांकि उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था और उनकी बेटी से जब मैंने ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र रिकवरी वो 2 साल में आराम से कर लेते। जो फीस वो लेते थे वो बहुत शानदार थी, तो वो जो भरपाई नुकसान की थी वो 1-2 साल में कर लेते, लेकिन तब तक उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। तीसरी कसम के लिए उन्होंने एक बेमिसाल गाना लिखा था, उसको सुनते हैं।

गाइड के बाद जब ज्वेल थीफ बनाने की बारी आई थी तो ये तय हो गया था कि चूंकि गाइड में इतने अच्छे गाने लिखे हैं तो शैलेंद्र ही गाने लिखेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, शैलेंद्र तीसरी कसम बनाने के बाद डीप डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। विजय आनंद जब मिलने आते तो शैलेंद्र ये कहलवा देते कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन विजय आनंद ने एक ट्रिक सोची। उन्होंने लिंकिंग रोड पर गाड़ी बाहर ही छोड़ दी, पैदल आए, बेल बजाई और लगभग गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और कहा कि आप ये बताओ कि आप गाना क्यों नहीं लिख रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखो अब मेरा हौसला नहीं रहा है और मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिख पाऊंगा। एक ही गाना उन्होंने इस फिल्म का लिखा और उसके बाद बाकी गानों के लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम दिया और मजरूह सुल्तानपुरी ने बाकी गाने लिखे। लेकिन ये जो गाना है रुला के गया सपना मेरा, ये असल में शैलेंद्र ने हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये उनकी अपनी जिंदगी की निराशा की कहानी है। कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, हाय कि दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। इसको अगर आप शैलेंद्र पर फोकस करके देखें तो आपको लगेगा कि उनके दिल में यही चल रहा था और वो बहुत निराश थे और ये गाना उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये अपने लिए ज्यादा लिखा था उन्होंने।

0: ये शैलेंद्र का लिखा आखिरी गाना था और ये वो दौर था जब शैलेंद्र की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी और 14 दिसंबर 1966 को जब शैलेंद्र को एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो राज कपूर के घर के सामने से गुजरे और राज कपूर ने उन्हें आखिरी बार देखा और ये कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे कविराज और हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन 14 दिसंबर को शैलेंद्र ने अलविदा कह दिया। राज कपूर के जो बहुत ही अजीज लोग हैं वो इसी तरह से छूटते चले गए थे। जैसे मुकेश गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ चली गई, कविराज शैलेंद्र गए तो वो बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे। केवल 43 बरस की जिंदगी, 17 साल का करियर और ये तो एक घंटे का प्रोग्राम है पर अमूमन मैं शैलेंद्र के गानों की जो कहानियां हैं वो 3 घंटे तक सुनाता हूं। आज की ये महफिल इतनी ही, जाहिर है कि बहुत बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी और कहानियां कही जा सकती हैं। 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं। एक ऐसा गीतकार जिसने हमारी जिंदगी के बहुत सुनहरे पलों को बांटा है, हम विविध भारती परिवार की ओर से शैलेंद्र को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज का सृजन भारती कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय ब्रह्मात्मक जी क्या कहते हैं।
2: शैलेंद्र के यहाँ लोक बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है, चाहे वो लोकगीत के परंपरा हो, किस्से कहानियां हो, उसके अलावा भक्ति काव्य की निर्गुण परंपरा, सगुण परंपरा से नहीं लेते हैं वो, निर्गुण परंपरा से चीजें लेते हैं। अध्यात्म बहुत है उनके कविताओं में, उनके गीतों में, सब जगह है। जो 26 साल से पहले की उनकी उम्र है, जहाँ उनका शैशव है, जहाँ उनकी जवानी है, जहाँ वो काम करते हैं रेलवे में, 8 साल मशीन के तानपुरे के साथ में कविता करता रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हाँ, उन्होंने खुद लिखा है। तो मशीन का तानपुरा, ये शिमली अपने आप में कैसी लगती है। और ये उनके टीचर ने कभी कहा था जब वो मथुरा छोड़ के आ रहे थे इधर, तब उन्होंने कहा क्या तुम अब मशीनों को सुन के गीत लिखोगे। उनके सारे गीत चरित्रों के हिसाब से लिखे गए हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से लिखे गए हैं और गीत संवादों का काम करते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है जानी मानी गायिका दीपाली सहाय के विचार गीतकार शैलेंद्र के बारे में।
3: शैलेंद्र के प्रेम में कोई गायक या गायिका नहीं है जो उनके प्रेम में नहीं है। और हम प्रेम शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सिंगिंग में धुन बनाना और गाना लिखना ये एक अलग डिपार्टमेंट है, पर ये उनका जो सपना है धुन बनाने वाले का और गाने लिखने वाले का जो सपना है वो पूरा करता है एक गायक या गायिका। और जब तक कि हम लोग उस सपने को समझेंगे नहीं, हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और शैलेंद्र हर सिंगर के लिए वो इंस्पिरेशन है। और मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है कि
4: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले समारोह में चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार के लिए कुल 82 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए 5 दलों के 43 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को चुना गया है। इनमें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री तथा खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा में प्रदेश से जुड़े 9 नागरिकों की जानकारी मिल गई है। इनमें 2 के परिजनों से संपर्क स्थापित हो चुका है। रायपुर के 5 नागरिक सुरक्षित हैं और वापस लौटने के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बिलासपुर और सरगुजा से जुड़े 2 नागरिकों के लापता होने की सूचना है। राज्य सरकार

0: प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाश में बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उससे लगे जिलों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा निर्मित है। इसके असर से प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 30 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब अपनी इस रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया।

0: गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बपी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

लाते रहना। अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम। लेकर बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन शब्दों से आप गाने चुने, तो वो इबारत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। आज यूं ही पुराने पन्ने पलट रही थी, अचानक एक मुड़ा तुड़ा पत्र उंगलियों के बीच ठहर गया। उसके साथ सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां थीं। वक्त ने जिन्हें मुरझा दिया था, मगर उनमें अब भी तुम्हारे प्यार की खुशबू बाकी थी। पत्र खोलते ही जैसे बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। तुम्हारे शब्दों में वो इंतजार था जो कभी मेरी रातों का साथी हुआ करता था। याद आया कि हमने गुनगुनाया था, रात भर आपकी याद आती रही, जहां मैं जाती हूँ वहीं चलती हो, और तुम्हारा इंतजार और मैं खामोशी उड़ते चांद को निहारती रहती थी। कितना कुछ चाह कर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सके। तुम मेरे हमदर्द, मेरे हमसफर थे, या शायद ये सब वो तेरे प्यार का एक बहाना था। ना समझ मन को कैसे समझाऊं, आज सूखी पंखुड़ियों को हथेली पर रखकर लगा चांद बदल गया, रात गुजर गई, इंतजार भी बीत गया, मगर तुम्हारी यादों के पत्ते सूखकर भी खुशबू नहीं खोए। तो ये है आज की इबारत, और इसी इबारत में छुपे हैं आज के शब्द, और एक एक शब्द में कई कई गाने छुपे हैं। तो आज आपकी परीक्षा कठिन है, देखिए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं। आज तो हमने क्या किया है कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर आई और आपने जो गाने सुझाए हैं वही गाने हमने ले लिए हैं, और कुछ गाने अपनी ओर से हमने ऐड किए हैं। तो जरा गाने सुझाइए, देखिए हो सकता है आपके और हमारे गाने एक हो जाए। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम का, और ये संगम फिल्म का गाना है। सुनिए और देखिए कि इबारत में ये

शब्द आया या नहीं और कौन सा वाला शब्द है। साथ में बूझिए पहेली कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, आसानी से बूझ जाएंगे। दो हीरो हैं, एक हीरोइन है, पत्र कौन लिखता है किसके नाम, जरा ये बताइएगा किसके नाम पत्र लिखा जाता है, किसकी ओर से, हीरोइन की ओर से पत्र लिखा जाता है तो किसके लिखती है। संगम फिल्म गाना ये रहा।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है। सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया, खत कितना

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर की बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है, खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल के सरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे। क्या तितली पकड़ में आती थी? वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है, सब लोग अपने अपने ज़माने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे ज़रा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों की बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा। क्या बात है, हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं, ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं। आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो ज़रा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। एक और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के ज़माने में भी। तो ज़रा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं। अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को? याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए, और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज थी और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में घुल मिल गए हैं, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियां तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबू में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है, कितना भी समय बीत जाए खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधली नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे, तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई, लेकिन अभी हम आपको कागज के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

सुन रहे थे आप कागज के फूल फिल्म का गाना और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, गुरुदत्त और वहीदा रहमान, श्रोताओं ने सही बताया है और गीता दत्त की आवाज थी, ये बहुत कम लोगों ने बताया। गीतकार का नाम भी श्रोताओं ने बूझा नहीं, कैफी आजमी थे। और अब अगली पहली बूझिएगा, फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, उन्हें हाथ से छूने भर से वो पल वो समय नजर के सामने छा जाते हैं, होठों पर खुशी छा जाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूल तुम्हें मैं भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, खत में भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता नहीं मालूम। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तितली को पकड़ना नहीं पर हाँ तितली से प्यार तो है, हमें रंग बिरंगी तितलियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, जब वो फूल पर आकर बैठती हैं तो हम उसे निहारते जरूर हैं और खुशी इस बात की होती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश फूलों के पौधे लगाने से इन्हीं नन्ही तितलियों को भोजन मिलता है, बस शायद इसीलिए ही हमें फूलों और पौधों से प्यार है कि वो सदा हमें देते ही हैं खुशी, कभी हमसे कुछ लेते नहीं। क्या बात है भाई। चलिए अब आगे बढ़े और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट। सुनिए और बताइए कौन है कलाकार, कौन हीरो, कौन हीरोइन, चाहे तो आप गीतकार का नाम भी बूझ सकते हैं, संगीतकार का नाम भी। फिल्म पेइंग गेस्ट।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बज गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप इबारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं, और तब तक आपकी टिप्पणियां आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था। बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये, तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम हमदम शब्द।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे हेमंत कुमार का संगीत था। और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है, कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि ख़त में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा, क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज़ खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से

मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहाँ तितलियाँ बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, एक पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताज़ा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपने खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक ये।

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था, इस गाने का जिक्र किया था, वो गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए और ज़रा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही बूझा। और लता मंगेशकर की आवाज थी, अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर।

जय किशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठा

कर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज़्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी

0: बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968-2919।
0: इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
3: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता।

0: है।
1: मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज फिल्म 14वीं का चांद।

14वीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीड शहर से रणजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

वासी जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये है, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण, फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में दुआ। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर्स से। और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: तो क्या, मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनूं?
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू? हैं? हैं?
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे?
2: हाँ? और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब? चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता, आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है?
2: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
3: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
2: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
3: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
2: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
3: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
2: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
3: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इंसान को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ो बैठ कर अखबार।
2: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
3: अरे क्या है?
2: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
3: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
2: फुर्सत नहीं क्यों, रसोई में तुम क्या धो रही थी?
3: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया, बर्तन कौन साफ करेगा? हमारा चाचा।
2: क्या कहा तुमने?
3: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
2: चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
3: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
2: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
3: क्या
2: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
3: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
2: खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है।
3: अब करना क्या है वो बोलो।
2: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
3: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
2: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
3: हाँ जी, गलती हो गई। बस
2: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
3: तो गलती सुधार लो।
2: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
3: बस बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
2: साफ सफाई? साफ सफाई कौन करे, मैं करूँ?
3: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
2: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
3: तो नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
2: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
3: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
2: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
3: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
2: सौ की सीधी। एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
3: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
2: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
3: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
2: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
3: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
2: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाटकूपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
3: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
2: अब रहने दो, रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
3: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
2: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
3: चप्पल टूट गई है।
2: टूट गई? किसने तोड़ी?
3: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
2: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
3: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं कि पूजा के लिए ले जाएगा।
2: उफो, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
3: वो
2: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
3: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो। उधर
2: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
3: कल रात तुम ही ने वहाँ उतारे थे।
2: अरे भाई इसके फीते कहाँ गए भाई?
3: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
2: कल तो थे ना।
3: चूहा ले गया होगा।
2: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
3: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो? तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
2: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
3: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
2: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
3: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
2: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता का

0: आ गया।
1: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
0: बाजार कैसे जाऊं? बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
1: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
0: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
1: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
0: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा? बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
1: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
0: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पकपक है।
1: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
0: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
1: अरे शादी के पहले तो कहते थे। रेखा, तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
0: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
1: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
0: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
1: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
0: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया। चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो।
1: देखो मेरे कपड़े वपड़े तो ठीक है ना?
0: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
1: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
0: मैं जा रहा हूँ।
2: मौसी मौसी मौसी, कहाँ हो तुम मौसी?
0: हाँ भाई, मैं हूँ।
2: मौसी जी, आप? हाँ हाँ हाँ, थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मोहली पीछे पड़ा है।
0: भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
2: महोदय जी, आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
0: वो क्यों?
2: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
0: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है।
2: मौसी कहाँ है लेकिन?
0: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
2: आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
0: अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतने जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
2: मौसी का है बताइए ना।
0: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
2: मौसा जी, ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं? अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
0: ओ हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो? मैं समझा मेरी मौसी।
2: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
0: Then you should not marry, because marriage is a biggest joke.
2: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
0: घर में झगड़ा कर आई हो?
2: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
0: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
2: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
0: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
2: enough. बहुत सुन लिया आपका मैंने।
0: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
2: घर मेरी मौसी का है।
0: और तुम्हारी मौसी मेरी है।
2: ऐसा आप समझते हैं?
0: क्या मतलब?
2: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
0: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं। समझ में आया?
2: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
0: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
2: मौसा जी,
0: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
2: नहीं।
0: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे।
2: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
0: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
2: हाँ, लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
0: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
2: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
0: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
2: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
2: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?

0: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
1: किसके बारे में?
0: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
1: क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
0: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
1: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
0: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में कामवाली ही समझते हो ना? सभी मर्द अहंकारी होते, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
2: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है।
3: क्या हुआ? इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए?
4: अरे लीना, तुम क्या हुआ?
1: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
3: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
1: इस पर पिताजी आए हैं।
3: तुम कब आई लीना?
0: अब भी थोड़ी देर पहले।
3: मुझे बुलाने में तुम्हें तक

0: भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
1: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
0: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
1: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
0: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
1: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
0: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
1: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
2: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो। जाओ ना।
1: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
2: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
0: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोल देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
3: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
2: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
3: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
2: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम
1: लीना, तुम होश में तो हो? ये क्या बोल रही हो?
2: गेट आउट, आई से गेट आउट।
3: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
2: ये लोग कोई पराया नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
0: चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाले लेता हूँ।
1: ये तो क्या कर रहे हो?
0: ये बूट बूट बूट
3: ये बूट तो मेरे हैं।
0: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
1: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है?
3: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
2: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
3: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
2: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
1: लीना, वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों? यूं
3: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग, ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
4: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
3: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
4: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
3: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
4: क्या बोलो?
3: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
4: ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम बाग में बैठे।
3: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
4: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
5: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
3: नो,
5: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
3: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
5: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
3: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
4: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
3: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
4: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
3: अरे यही दिन है रोमांस करने के लीना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
5: हाँ
3: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
5: हाँ क्यों?
3: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
5: ए कितने का दूं बाबूजी?
3: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
5: वहां बैठने का 10 रुपया?
3: हाँ हाँ,
5: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
3: नॉनसेंस। चलो किसी होटल में चलते हैं।
4: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
3: ऑल राइट, एज यू विश।
6: माफ कीजिएगा आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
3: क्या है?
6: कुछ नहीं,

0: कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
1: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
0: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
0: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
1: मगर आप हैं कौन?
0: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
1: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
0: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
2: आप क्या चाहते हैं?
0: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
1: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
2: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
1: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
1: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना।
2: हाँ,
1: अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना,
1: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
1: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
1: अरे भले ही ना पसंद हो लेकिन क्या मेरे खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले ये सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी

0: हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
0: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: नहीं।
0: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
0: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो।
0: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
0: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
0: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you।
0: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
3: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
2: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास कहाँ होगा।
2: अब कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
4: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कांगड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: बॉम्बे टॉकीज,
8: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
9: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
10: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताया

0: क्या बात है,
1: क्या बात है। अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर।
2: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
1: जी,
2: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
1: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माँ ने समझा रेडियो बज रहा है।
2: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों के का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
1: क्या बात है।
2: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
2: जी, आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है। बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आँख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही यू नो, पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही। तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है। क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए। ये मेरी लाइफ का यू नो, आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज़। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूज़िक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाइए। वहाँ से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था

0: इवन में चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
1: जी।
0: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था?
1: जी बिल्कुल, आई थिंक हम सिक्स्थ क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
0: सिक्स्थ क्लास में?
1: सिक्स्थ क्लास
0: पैर वैर पहुंच रहे थे?
1: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
0: भाग जाएगी
1: चाबी चुरा के,
0: एक्सीडेंट का डर नहीं।
1: हाँ तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: अरे
1: भगवान, रोके कैसे, चलाना तो आता है रोके कैसे।
0: हाँ।
1: फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम सिक्स्थ में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं, पता नहीं क्यों था। मेरे
0: गाड़ी मतलब
1: फोर व्हीलर
0: प्रॉपर वो तो, लाल बत्ती वाली?
1: नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही यू नो एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज़ पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
0: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
1: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
0: तो पैर पहुंचने।
1: हाँ, क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो अबाई सिक्स से लेके एट नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चिल्लाना शुरू कर दिए थे गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
1: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
0: एजुकेशन पे फोकस
1: है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर तो
0: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
1: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही हैं, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफ़ी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहाँ भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
0: बहुत ही रेपुटेड,
1: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है। माँ ने मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के ज़माने में जिस लड़की का बायोडाटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे।
0: मतलब इतनी काबिल,
1: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहाँ से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
0: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है।
1: नहीं है, नहीं,
0: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
1: राइट,
0: तो नशा होता है संगीत का वहां।
1: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था, सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर। और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्य और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले। तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया।
0: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
1: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा। तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
0: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
1: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो, जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: दीपाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक
0: सी एस आर
1: हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा ज़माना जब आया, जब हम सेवेंथ एट्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती हैं, आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जहां

0: पे हम एंट्री ले चुके हैं, वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी. और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई.
1: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
0: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा बच्चा उस सीजन को जानता है. तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, क्या है स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं. बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो. ठीक है चलो, माफ किया, छोड़ दिया हमने. इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो. तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे. इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे. हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं.
1: मेरे माँ बाप को 12th
0: के एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड.
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे. मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो. भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था. आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी. और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे. और वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा.
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहाँ आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहाँ के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए.
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था. बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था. तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे. कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है. और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था. हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था. तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था. तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था. ऑल दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा. अंग्रेजी इसको कैसे आती है. और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए. वो स्ट्रगल मेरे लिए ज़्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं. हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सिंग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो.
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं.
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
0: इतना
1: रहा है.
0: बड़ा. और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है. जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं. पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना. कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है. बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू.
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया. और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है.
0: करेक्ट.
1: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं. तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस. हमको एक ही चीज़ पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज़ है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे. बट मेरे पर्सनालिटी की जहाँ तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था

0: हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है ये।
0: जी, तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको, अब तो
1: अच्छा
0: आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने और
0: हाँ
1: अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट,
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात
0: बात
1: नहीं
0: नहीं
1: करता
0: करता है।
1: कि, लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है, और हम तो हम करके बात करते हैं, तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के, अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी मान चुकी
0: ये
1: थी
0: भी
1: आप?
0: माने हुए थे हम कि हम तो लड़की हैं, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए,
1: अरे बाप
0: हम
1: रे,
0: इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है।
1: ये ख्याल
0: पहले
1: कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज़ नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज़ नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे, वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सक, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का।
0: बताइए, बेटी बचवा।
1: हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो हैं उस दिशा में जा रही थी। वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज ना देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है।
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: ये, हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
0: ख्वाब होता है,
1: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी,
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया

0: चीटिंग इज रॉन्ग. आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है. मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें. ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो
1: एक
0: है
1: होता
0: जीवन
1: है.
0: जीवन वो है,
1: बिल्कुल.
0: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वही प्रेम है. ये बहुत बड़े होके समझ आता है. तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है. अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, चार दिन सल्प भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है. और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है. आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं. अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम.
1: बिल्कुल. मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी.
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट.
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
0: और
1: था.
0: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं. उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम. रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी. पता
1: तो
0: नहीं कौन सी किताब में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे. आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी. अपनी
1: कमजोरी दुनिया के सामने
0: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए.
1: हाँ.
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए.
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो तूफान,
1: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है.
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था. लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में.
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी.
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा, कि एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी. ये कहा था मिनी ने,
0: ये कहा था उन्होंने. दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके.
1: हाँ.
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई. तो वो मेरा मन रख रही है. हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे. मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है. बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है. मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था. तो उसके बाद, लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार.
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद,
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत. स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है.
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: पहले
1: हो गई.
0: था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं. आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से. तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है.
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज. तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं. आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में. यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा. घुसे, कोने में गए, और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है. ये स्थिति थी.
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन. कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं. किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब
0: हम
1: एक अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है.
1: गजब.
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल, और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार. और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास,

0: लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय. तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था. तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे. तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे. वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी. वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं. सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं. इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट.
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया, कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे. हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया. करनी तो पढ़ाई थी. अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है. यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी. अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें.
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है. तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या. गाना जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे. अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता. तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा.
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं. अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं.
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी.
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार. एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती
1: है, सब मुड़ के देखते हैं
0: ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया.
1: वो पर्दे के पीछे है.
0: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं.
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है. बट ये सपोर्ट होता है. वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है. ये इतना ताकत नहीं है मेरे में.
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें. ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
0: जी.
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका,
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान
0: होता है. सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं, 2-3 साल के अंतर पर.
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं.
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी

0: बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन
0: वो
1: की बात चल रही है।
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी, और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड़ पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है।

0: क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है। जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये टुकुडाण, सिलफिली, नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, धमनी, वाड्रफनगर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल

0: संख्या 19 है। ये दुप्पी चौरा मरकाडांड लोधीडांड आबादी बिशुनपुर सिलाजू पेंडारी कोटराही पोखरा गुरमुटी चिनिया महावीरगंज कनक पुर रामपुर बगरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी असकला दोरना जरहाडी चकेरी बासेन परोगिया घाटबर्रा घासीडी सरगा बोड़ाझरिया सिहारजोर शिवनाथपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूर चूंदी कुंजारा पाकरटोली श्री टोली उपका पानी बंदर चुआ लोढ़ा आंबा डोडा पानी शाही डांड कजरा नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये आम गाँव गेरसा उदा पोटिया आमापाली नागदरहा कुड़ेकेला छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कांसी पानी जाम पानी साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान जडगा एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमा टिकरा नवापारा सिटी पखना फुलसर कोरबी झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया बरकछार चक्रधरपुर धुमा बहाल नागदरहा कया कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी देवपुर और बार में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये हरदी गुड़ागढ़ अचानकपुर तेंदुचुआ पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। इसके प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता विहार शाम 5:30 पर। इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा मृत्यु के बाद भी अमर रहेगी दृष्टि, जब नेत्रदान से रोशनी होगी किसी की सृष्टि। इसके साथ ही सुनिएगा चर्चा देश के विकास और स्वास्थ्य का पैमाना खेल, और साथ ही सुनिएगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। और इसके अलावा आप सुनेंगे फरमाइशी गीत और सुनिएगा चर्चा भूकंप जैसी आपदा में जागरूकता ही पहला बचाव है।

0: हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6 बजे। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण होगा शाम 7:30 से। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से आज रात्रि 9 बजे। हमारे केंद्र से कार्यक्रम विविध संगीत सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम।

0: मिस्टर डॉस और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये पॉप गीत सुना।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, SHROTARAIGARH, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: जतिन मुतरेजा की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना कार्यक्रम पॉप टाइम के अंतर्गत।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सोना महापात्र और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

सचेत टंडन और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना और इसी के साथ ही पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अब समाप्त होता है। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

वनिता विहार सुन रही सभी श्रोता सखियों को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, नेत्रदान मानवता की सबसे बड़ी और महान सेवाओं में से एक है। बहनों, यदि हम चाहें

तो अपने जीवन के बाद भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, क्योंकि नेत्रदान केवल आंखों का दान नहीं है, बल्कि यह किसी के जीवन में प्रकाश का दान करना है। बहनों, हमारा जीवन समाप्त होने के बाद भी हम नेत्रदान के माध्यम से हमारी आंखों का उपयोग किसी जरूरतमंद व्यक्ति के दृष्टि लौटाने में कर सकते हैं। बहनों, मृत्यु के बाद अपनी आंखों के उपयोगी ऊतक कॉर्निया का दान करना को नेत्रदान कहते हैं। कॉर्निया आंख के सामने का पारदर्शी भाग होता है और हमारी दृष्टि स्पष्ट होने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहनों, ट्रांसप्लांटेशन में पूरी आंख नहीं लगाई जाती है, बल्कि उपयुक्त कॉर्नियल ऊतक का उपयोग किया जाता है। नेत्रदान करने से दो लोगों को नया जीवन मिलता है, मतलब एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से दो दृष्टिहीन लोगों को नई रोशनी मिल सकती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आंखों की स्वस्थ कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहनों, नेत्रदान से जुड़ा एक मुख्य तथ्य यह भी है कि इसमें व्यक्ति के मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आई बैंक को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ताकि वे आकर सही समय पर कॉर्निया निकाल लें, और इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। बहनों, नेत्रदान किसी भी उम्र, लिंग या ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। अगर वह चश्मा पहनने वाला व्यक्ति है या फिर वह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हों, नेत्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुगर या बीपी के पेशेंट भी नेत्रदान कर सकते हैं। बहनों, आज भी हमारे समाज में नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां और अंधविश्वास फैले हुए हैं। आज भी कुछ लोग यह समझते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर का कोई अंग निकालने से अगले जन्म में व्यक्ति अपंग पैदा होगा। यह पूरी तरह से गलत है और वैज्ञानिक आधार से भी परे है। बहनों, नेत्रदान से मृत व्यक्ति के चेहरे में कोई विकृति नहीं आती और डॉक्टर्स की टीम बहुत सम्मान और संवेदनशीलता के साथ कॉर्निया को निकालती है। इसलिए बहनों, हमें सारे अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और नेत्रदान में अपना ही अवसर दिखाना होगा। बहनों, नेत्रदान मृत्यु के बाद भी अमरता का एहसास है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। आज नहीं तो कल हर इंसान को यह संसार छोड़कर जाना है, परंतु नेत्रदान के माध्यम से हम मृत्यु के बाद भी इस दुनिया का हिस्सा बने रह सकते हैं। बहनों, जब हमारी आंखों से दूसरा कोई व्यक्ति इस सुंदर संसार को देखेगा, तो इनडायरेक्ट रूप से हमारी दृष्टि भी जीवित रहेगी। यह एक इंसान को मृत्यु के बाद भी अमर बनाने का सबसे पवित्र तरीका है। बहनों, नेत्रदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है, और आज जरूरत है हमें तो इस बात की कि हम जीते जी नेत्रदान का संकल्प लें, और हमें अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। बहनों, नेत्रदान के लिए जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक किसी अंधेरी जिंदगी में उजाला नहीं लाया जा सकता। बहनों, नेत्र हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। अपनी आंखों के माध्यम से हम इस सुंदर संसार को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जन्म से या किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण दृष्टिहीन होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में नेत्रदान एक नई आशा और रोशनी लेकर आता है। इसलिए बहनों, हमें जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी अमर रहेगी दृष्टि, नेत्रदान से रोशनी होगी किसी की सृष्टि। इसलिए बहनों, नेत्रदान करें, अंधकार मिटाएं और किसी के जीवन में नई रोशनी लाएं। और इन बातों के बाद बहनों, अब चलते हैं अपने अगले क्रम की ओर। और आज महीने का 5वां शनिवार है और क्रम है आपकी फरमाइश के गीतों का। तो बहुत बहुत स्वागत है बहनों आपका इस क्रम में। बहनों, आपकी फरमाइश की गीतों में मैंने पहला पत्र लिया है जुनवाणी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और पत्र भेजने वाले हैं श्रीमती तारा विद्या साहू, रोहिणी नागेश्वरी साहू, छविता पूनम साहू, और इसके साथ ही साथ केवटा पारा रायगढ़ से भी पत्र भेजने वाले हैं मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद, मीनू निषाद, और इसके साथ ही साथ दुर्गा चौक रायगढ़ से पत्र भेजने वाले हैं गेंदलाल श्रीवास, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, संतोष श्रीवास, दिलीप साहू और गेंदू भाई। और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म आन मिलो सजना से।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: बहनों, अभी अभी आपने गीत सुना फिल्म आन मिलो सजना से, जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बहनों, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले चर्चा की ओर। बहनों, किसी भी देश के विकास और स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पैमाना खेल भी है, क्योंकि खेल से व्यक्ति स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनता है। बहनों, हमारे भारत देश में अनेक महान खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। उनमें मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बहनों, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, और आज 29 अगस्त का यह दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहनों, मेजर ध्यानचंद भारतीय सेना में शामिल हुए और वहीं से हॉकी खेलने की शुरुआत की। वे अपने खेल के प्रति बहुत मेहनती और समर्पित थे। मेजर ध्यानचंद ने सन 1928, 1932 और सन 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें हॉकी खेलने की कला बहुत ही अद्भुत थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे गेंद उनकी हॉकी स्टिक से मानो चिपक गई हो। इसी कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया है। उन्होंने अपनी शानदार खेल प्रतिभा और मेहनत से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बहनों, मेजर ध्यानचंद केवल एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि अनुशासन और देश प्रेम के आदर्श भी थे। इसके अलावा खिलाड़ियों के साथ ही साथ वो उन्होंने हमारे देश का और बाकी चीज़ों में भी हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और मेजर ध्यानचंद जो है, हम एक बात इसमें और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे देश के सबसे बड़े गौरव है। उन्होंने यह साबित किया कि निरंतर अभ्यास और लगन से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और आने वाले देश की पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित भी किया। बहनों, खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि हमारा शरीर भी इससे स्वस्थ रहता है, और साथ ही साथ खेल से टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास होता है। बहनों, मेजर ध्यानचंद भारत के गौरव हैं। आज हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर खेलों में भाग लेना चाहिए। खेल हमें स्वस्थ रहने के साथ साथ टीम भावना, अनुशासन और धैर्यता का गुण भी सिखाते हैं, और साथ ही साथ बहनों, खेलों में आगे बढ़ने से देश का सम्मान भी बढ़ता है। बहनों, मेजर ध्यानचंद हमारे भारत की शान व गौरव हैं, और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा के साथ मेहनत और अनुशासन सफलता की कुंजी है। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए चलते हैं हम अपने पत्रों की अगली श्रृंखला की ओर। और अगला पत्र हमने लिया है गौशाला पारा रायगढ़ से, और पत्र भेजने वाले हैं विनोद कुमार गुप्ता, रीना, शशि, शीश, अंश, सनी, सुनीता, खुशी, और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म लव स्टोरी से। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

बहनों, अभी अभी आपने गीत सुना फिल्म लव स्टोरी से, जिसे जिसमें आवाज़ दिया था लता मंगेशकर और अमित कुमार जी ने, और जिसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। बहनों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भूकंप जैसी आपदा में किस तरह से जागरूकता ही एक पहला बचाव है। बहनों, भूकंप एक अत्यंत विनाशकारी और प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण अचानक ही उत्पन्न होती है और जान माल को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और इससे बचने के लिए जागरूकता और सही जानकारी ही हमारा पहला बचाव है। बहनों, भूकंप के समय हमें कभी भी

घबराना नहीं चाहिए और भूकंप के समय में यदि हम घर पर हों तो किसी मजबूत मेज के नीचे बैठकर सिर और गर्दन को ढकना चाहिए। और इस तरह से सिर और गर्दन को ढकना जरूरी है क्योंकि भूकंप के झटकों से छत, दीवारों या अलमारी से सामान गिर सकता है। मजबूत मेज हमें गिरती हुई वस्तुओं से बचने में मदद करती है और सिर और गर्दन को ढकने से गंभीर चोट का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। और इसके साथ ही साथ बहनों, हमें खिड़कियों, शीशों और किसी भी भारी सामान से भी दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ बहनों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भूकंप के समय में हम कभी भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें और इसके बजाय हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि भूकंप के झटकों के कारण पावर सप्लाई भी तुरंत ठप हो सकती है। ऐसे में आप लिफ्ट में फंस सकते हैं और साथ ही भूकंप के झटकों की वजह से लिफ्ट की केबल, टैक्स या काउंटरवेट अपनी जगह से हिल भी सकती है, जिससे लिफ्ट बीच में ही अटक सकती है या फिर गिर सकती है या फिर मलबे के कारण भी लिफ्ट का रास्ता बंद हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके लिफ्ट बिल्कुल भी ना लें और सीढ़ियों की मदद लें। बहनों, भूकंप के समय यदि हम घर से बाहर हों तो किसी भी इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से भी दूर रहना चाहिए और इसके स्थान पर किसी खुले स्थान पर जाना चाहिए क्योंकि भूकंप के झटकों के कारण इमारतें, घर या उनकी दीवारें भी गिर सकती है। इसके अलावा खिड़कियों के कांच, मलबे और कंक्रीट के टुकड़ों से गंभीर चोट भी लग सकती है। और इसके साथ ही साथ हमें बिजलियों के खंभों से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे न सिर्फ चोट लग सकती है बल्कि टूटकर गिरे हुए तारों से करंट लगने और आग लगने का भी सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए इन चीजों से भी हमें दूर रहना बेहद जरूरी है। और भूकंप के समय बड़े बड़े पेड़ों से भी दूर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि भारी या पुराने पेड़ या उनकी बड़ी शाखाएं जड़ से उखड़कर नीचे में खड़े लोगों पर या फिर गाड़ियों पर भी गिर सकती है। इसलिए जब तक भूकंप के झटके रुक न जाएं, तब तक हम किसी खुले मैदान या खुली जगह पर बने खड़े रहें। बहनों, भूकंप के बाद हमें गैस व बिजली के उपकरणों की भी जांच करना बेहद जरूरी है। जैसे ही भूकंप के झटके समाप्त हुए तो गैस व बिजली के उपकरणों की जांच करना बेहद सावधानी से हमें उसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि लापरवाही बरतने पर आग लगना या ब्लास्ट होने का गंभीर खतरा भी रहता है। इसलिए सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करें। और साथ ही साथ बहनों, हमें अफवाहों से भी दूर रहना चाहिए और ऐसे समय में बच्चे व बुजुर्गों की सहायता करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बहनों, आपदा को रोकना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर नुकसान को हम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। भूकंप से बचाव का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस छोटी सी चर्चा के बाद आइए चलते हैं हम पत्रों की अगली श्रृंखला की ओर। और अगला पत्र लिया है हमने श्री झूलेलाल कानूनी रायगढ़ से और पत्र भेजने वाले हैं लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी और शुभम वाधवानी एवं राजपाल खिलवानी। और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म सुहाग से, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

बेनो, घड़ी की सुइयां इशारा दे रही है कि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के अगले किसी कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।

महिलाएं अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी वनिता विहार। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक

0: का कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्यीय भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार हिन्दी में आप सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे एक बार फिर से शाम 7:00। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी रायपुर से, इसे आप सुनेंगे शाम 7:30 से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8:00। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। और समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर। रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। 9:00 रिले करेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 से हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम विविध संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण

0: मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। आज महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के मौका में प्रदेश के मुख्यमंत्री 125 जिन खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य खेल अलंकरण लेकर सम्मानित। प्रधानमंत्री काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम के 137वां कड़ी में देश विदेश के लोगन मल्ले कर ही अपन विचार साझा। और मौसम विभाग अब यह 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 13 जिला में येलो अलर्ट जारी करे है। एक दो जगह में भारी वर्षा हो के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। देशभर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद के जयंती ला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा थे। ये मौका में प्रधानमंत्री मेजर ध्यानचंद ला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जम्मू खेल प्रेमी मन ला राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभकामना देवत किहिन कि इखर समर्पण और संकल्प देश ला गौरवान्वित करते। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में प्रदेश में घलो कतकोन कार्यक्रम हो थे। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री 125 जिन चुने गए खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य खेल अलंकरण ले सम्मानित करीन। जेमा 82 खिलाड़ी और 43 प्रशिक्षक और निर्णायक शामिल है। इमल्ला शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी देगी। नेपाल में आए बाढ़ में मृतक मन की संख्या बाढ़ के अब 626 हो गए है और 2000 ले ज्यादा लोगन मन लाप्त है। इस बीच भारत बाढ़ प्रभावित नेपाल ला मदद दे के सरलक काम करत है। विदेश मंत्रालय है बताइन कि 320 भारतीय नागरिक मन ले अब तक संपर्क नहीं हो पाए है। इस बीच बाढ़ में फंसे छत्तीसगढ़ ले जुड़े 9 जिन लोगन मन के

0: जानबा मिल गए हे। उहें रायपुर के 5 जिन लोगन मन ल घलो सुरक्षित हवय। फिर बिलासपुर और सरगुजा ले 2 जिन लोगन मन के लापता होए के सूचना मिले हे। राज्य सरकार हा नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसी मन संग सरलग गोटबात करत हे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हा काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले अपन विचार साझा करही। मासिक रेडियो कार्यक्रम के यह 137वां कड़ी होही। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के जम्मू चैनल, आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और मोबाइल एप में करे जाही। संगे संग आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय के संगे संग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल में एकर सोझे प्रसारण होही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक सेवा और जन समर्पण के 25 बछर पूरा होए के मौका में आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राज्य स्तरीय कार्यशाला राखेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखण साहू, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल के संगे संग प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और पार्टी के पदाधिकारी मन शामिल होइन। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौका में भाजपा 17 सितंबर ले 18 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाही। इस दौरान प्रदेश भर में पार्टी कोती ले कतकोन सेवा गतिविधि के कार्यक्रम करे जाही। केंद्र सरकार सक्कर ला बेरा में देवाय बर अभी के मासिक कोटा प्रणाली के जगह में अवैया महीना ले पखवाड़ा के आधार में सक्कर आवंटन प्रणाली शुरू करे के फैसला ले हे। एमा चीनी मिल मन ला पहली हफ्ता में कम ले कम 40% आबंटन और बांचे मात्रा ला अगला हफ्ता में बेचना होही। केंद्र सरकार डहर ले सार्वजनिक परीक्षा सुधार मन बर बनाए गए उच्च स्तरीय कार्यबल छात्र, पालक और शिक्षक मन के संगे संग जम्मो हितधारक मन ले सुझाव मंगाए हे। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800180447 के माध्यम ले भेजे जा सकते। ये सुझाव ईमेल के माध्यम ले घलो भेजे जा सकते। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ढार ले राखे गए परीक्षा के संगे संग सार्वजनिक परीक्षा मन के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और प्रशासन ले जुड़े बड़का सुधार के जांच और सिफारिश पर जाने माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल के गठन करेगे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बांचे समाचार को थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषय मन के परिणाम घोषित कर दिए गए है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ESO जून में होए अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा ला एक घाव फेर करवाए के घोषणा करे है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्र में टाइपिंग, अनुवाद और भाषा ले जुड़े गलती पाए जाए के बाद ये फैसला ले गए है। 16 अगस्त के समाजशास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषय के उत्तर कुंजी जारी करे के बाद तीनों परीक्षा अगला महीना के सितंबर में एक घाव फेर कराए के घोषणा करे गए है। ये परीक्षा 9 और 10 सितंबर के होगी। राज्यपाल रमेन डेका आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला के चांपा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राखे गए सम्मान समारोह में शामिल हुईन। ए मौका में राज्यपाल वरिष्ठ शिक्षक और कक्षा 10वीं 12वीं के होशियार लैका मन ला सम्मानित करीन और संगे संग स्कूल में नवा बने सभा कक्ष के लोकार्पण करीन। छत्तीसगढ़ पुलिस डहार ले 15 अगस्त ले शुरू करे गए साइबर जागृति अभियान के तीसर हफ्ता काली ले शुरू हुई। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा बतायन कि ए अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिक मल्ला डिजिटल अरेस्ट ले बचाव के जानबादे के संगे संग पुलिस अधिकारी मन बन के करे जाए फर्जी काल के माध्यम ले धमकी जैसन खतरा ले बांचे के उपाय बताए जाही। संगे संग बैंकिंग ले जुड़े जानबाला साझा करे के जोखिम और साइबर ठगी ले बचाव के उपाय के बारे में लोगन मल्ला जागरूक करे बर अभियान चलाए जाही। जसपुर में पहली घाव चेकमेट एट जसपुर अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता आज ले शुरू होगी। प्रतियोगिता के शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साहू करीन। 1 सितंबर तक चलिया ये प्रतियोगिता में

0: 12 राज्य के 175 खिलाड़ी और कोच मन भाग लेवा थे। प्रतियोगिता 8 चक्र में फिडे स्विस प्रणाली के माध्यम ले होवा थे। बिलासपुर जिला में आज ट्रक के टक्कर ले फटफटी में बैठे 3 जिन मनखे के मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़ के भाग गए। ये घटना जूनापारा चौकी थाना क्षेत्र के हरे। पुलिस के मुताबिक 3 जिन मनखे मन फटफटी में बैठ के जात रहीन, यही दौरान ट्रक ले एकर गाड़ी टकरा गए। ये घटना में 3 जिन मनखे मन के मौकच में प्राण छूट गए। ओती कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में आज बिहनिया गांव किनारी के तीर एक ठिन तेज रफ्तार फटफटी चलैया ट्रक ले टकरा गए। ये घटना में 1 जिन मनखे के मौत हो गए और 2 जिन आने मनखे मन गंभीर रूप ले घायल हो गए है। अब वह पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर के संगे संग प्रदेश के कतकोन जगह में आज हल्का ले मध्यम वर्षा हुआ थे। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के खाड़ी में एक ठिन नवा सिस्टम बने हैं। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास निम्न दाब के क्षेत्र सक्रिय है। उन्हें पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तट ऊपर ऊपरी हवा के एक ठिन चक्रवाती घेरा बने हैं। एकर असर ले प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बने हवाए। मौसम विभाग अब या 24 घंटा के दौरान रायपुर दुर्ग धमतरी बेमेतरा बालोद महासमुंद गरियाबंद बलौदाबाजार जांजगीर चांपा शक्ति सारंगढ़ बिलाईगढ़ रायगढ़ और जसपुर जिला पर येलो अलर्ट जारी करे है तो उन्हें एक दो जगह वहां भारी वर्षा होने की चेतावनी दे है। अब थोरकुन समाचार सार मा। राज्य शासन है भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य ला छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद में पदस्थ करे है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज जसपुर में 93 करोड़ रूपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन और सुकमा जिला के पोलमपल्ली स्थित बालिका पोटा केबिन में पाछू 2 दिन में 47 जिन छात्रा मन बीमार हो गए है। उमल्ल दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए है। संशो जताए गए है कि फूड प्वाइजनिंग की स्थिति छात्रा मन के तबियत बिगड़े है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती के मौका में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 125 जिन खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक मल्ला राज्य खेल अलंकरण लेकर इन सम्मानित। प्रधानमंत्री है काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम के 137वां कड़ी में देश विदेश के लोगन मन लेकर ही अपन विचार साझा। और मौसम विभाग है वही 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 13 जिला में येलो अलर्ट जारी करे है। एक दो जगह में भारी वर्षा होए के दे है चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने सुना राज फिल्म का गीत, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत था।

0: हम है राही प्यार के। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत था।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: दीवाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत था।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: दामिनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने, और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंटर

0: रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज रायपुर में मुख्यमंत्री ने 125 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। बिलासपुर जिले में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। देशभर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 125 चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया। इनमें 82 खिलाड़ी और 43 प्रशिक्षक और निर्णायक शामिल हैं। इन्हें शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक हर साल आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी इस साल छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार 5 प्रमुख मिशनों पर काम कर रही है, इनमें खेल उत्कृष्ट मिशन भी शामिल है।
6: छत्तीसगढ़ के अंदर में जो प्रतिभा है उनको तराशने का काम हो रहा है और खेल को आगे और आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग 5 मिशन में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। उसमें एक मिशन हमारा खेल उत्कृष्ट मिशन भी है। ये 100 करोड़ बजट का है। इसमें हम लोग आने वाले समय में जो पूरे प्रदेश के अंदर खेल जगत की जो प्रतिभाएं हैं उनको खोजने का, उनको तराशने का काम करेंगे। और आने वाले समय कामल में तो ओलंपिक जैसे खेलों के लिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को तैयार करेंगे, ऐसा सरकार का पूरा पूरा प्रयास है।
5: समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा और जनसमर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सेवा ही संकल्प अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लाभार्थियों तक

0: पहुंचे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितम्बर से सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में पार्टी की ओर से विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान का तीसरा सप्ताह कल से शुरू होगा। सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित झा ने बताया कि अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी कॉल के माध्यम से धमकी जैसे जोखिम से बचने के उपाय बताए जाएंगे। वहीं बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने के जोखिम और साइबर ठगी से बचाव के उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर जिले में आज ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ये हादसा जूनापारा चौकी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 3 युवक एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इसी दौरान ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह ग्राम किनारी के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच बाढ़ में फंसे छत्तीसगढ़ से जुड़े 9 नागरिकों की जानकारी मिली है। इनमें 2 के परिजनों से संपर्क हो चुका है। वहीं रायपुर के 5 नागरिक सुरक्षित हैं और वापस लौटने के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बिलासपुर और सरगुजा से जुड़े 2 नागरिकों के लापता होने की सूचना है। राज्य सरकार, नेपाल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल रमिंडे का आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के चांपा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने वरिष्ठ शिक्षकों और कक्षा 10वीं-12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय में नवनिर्मित सभा कक्ष का लोकार्पण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक अपने आचरण और व्यवहार से विद्यार्थियों का रोल मॉडल बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने और कौशल विकास के लिए सहायक है। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित सप्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में आज से प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक सुनील सोनी ने किया। 31 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जशपुर में पहली बार चेकमेट एट जशपुर अखिल भारतीय ओपन फेडरेटेड शतरंज प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने किया। 1 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के 175 खिलाड़ी और कोच भाग ले रहे हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शतरंज परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली बारिश की

0: स्थिति बनी हुई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ और जशपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अजशपुर में 93 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और सुकमा जिले के पोलमपल्ली स्थित बालिका पोटा केबिन में पिछले 2 दिनों में 47 छात्राएं अचानक बीमार हो गईं। उन्हें दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज रायपुर में मुख्यमंत्री ने 125 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। बिलासपुर जिले में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहले सुनिए आराधना फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के बोल हैं और SD बर्मन का संगीत है।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: कस्मे वादे फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलशन बावरा के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत था।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के

0: बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: शक्ति फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वर में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था आरडी परमन ने।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

0: त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और यशुदास की आवाजों में। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इसे स्वरबद्ध किया था खय्याम ने।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

0: दीवार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। साहिर लुधियानवी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत था। और इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी रायपुर से।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अच्छा सरिता, हमार खेती किसानी के बूता मा हमन ला मौसम के हिसाब से, महीना के हिसाब से, बखत के हिसाब से, कहन की पानी हवा आसपास के वातावरण के हिसाब से खेती किसानी करे लगथे। अब ये खेती किसानी के बूता बड़ सावधानी के बूता हरे, बेरा के बूता हरे। ऐसने अभी के महीना खेती खातिर बहुत अवसर देने वाला होते, विशेषकर बरसाती सब्जी, दलहनी फसल और कुछ अगेती फसल खातिर ये महीना बहुत बढ़िया होते। ये बेरा पानी के निकासी, रोग कीट प्रबंधन और सही किस्म के चुनाव बड़ जरूरी होते।
1: बिल्कुल सही कहा था चंपेश्वर। और अभी बोए जाने वाले सब्जी में प्रमुख फसल में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, धनिया, गाजर, पताल, मिर्चा, भाटा, खीरा, लौकी, करेला, तुरई और जैसे कि कद्दू है, भिंडी, पालक भाजी, चौलाई भाजी, ये सब प्रमुख है।
0: अब ये ना अभी किसान मा कहन की किसान संगवारी मन हा ये रकम ले सब्जी उगाते ना तेमा फायदा घलो बड़ होते। और ये का है तुरंत के साग भाजी हरे और बाजार में एकर मांग घलो रही थे, तो यही रकम ले दलहनी फसल मा मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया जैसन फसल है उन्हें कुछ क्षेत्र में हल्दी और अदरक के बुआई भी करे जा सकते। अब यहू बात ला जानना जरूरी है सरिता कि ये महीना में कौन से खेती ज्यादा उपयोगी है जिन कम बेरा में तैयार होके ज्यादा ले ज्यादा लाभ देवे।
1: बिल्कुल सही कहा था। और कम बेरा में तैयार हो या फसल में मूली है, धनिया है, पालक और मेथी जैसन जो विकल्प है बहुत बढ़िया है। संगे संग बेल वर्गी सब्जी में खीरा, लौकी, कद्दू, करेला के जो हम बात करे हैं वो जल्दी मिल जाते। और कोनो बरसात के बाद के आने वाला बाजार के योजना बनावत हन तब ही फूल गोभी और पत्ता गोभी के अगेती नर्सरी जो है वो कर रोपाई उपयोगी रहते।
0: बिल्कुल सही कहे। ऐसे है कि ये फसल में ध्यान देना जरूरी है कि

0: बारिश के मौसम में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फसल सड़ सकते या फिर ओमा फफूंद रोग बढ़ सकते। सादा मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स और वायरस रोग की निगरानी रखना जरूरी है, विशेषकर पताल, मिर्ची, भाटा और बेलवर की फसल में। ये सावधानी बहुत जरूरी है और यही रकम ले हम खेती में आगू बढ़ सकथन, अगवा सकथन।
1: नर्सरी बीज उपचार और समय मान निंदाई गुड़ाई ले उत्पादन तो बेहतर होबेच करथे और जम्मो फसल के उत्पादन ले हमला ज्यादा ले ज्यादा लाभ होते।
0: तो ऐसे है कि खेती किसानी में सावधानी जरूरी है संगी, सुनना आकाशवाणी और आकाशवाणी के किसान वाणी सलाह जम्मो और हलो किसान वाणी, विशेषज्ञ मन के सलाह और अपन स्वयं की मेहनत ले बड़ बढ़िया खेती करके हम खूब मुनाफा कमा सकत हन। अब ये सिरतोन बात है, काबर कि हमर किसान संगवारी मन अपन अनुभव ले, कृषि विशेषज्ञ मन के सलाह ले, खेती किसानी के बूता ल कर करके कर करके एक एक जोन खेती किसानी के बारीकी वाला समझ चुके हबे। त ये जम्मो रकम ले हम कोनो जुर मिलके खेती किसानी के बूता करबो तो निश्चित रूप ले हमला सफलता मिली। और रही बात पर्यावरण के, तो भाई खेती किसानी के बूता करना ही अपन आप में पर्यावरण के संरक्षण हबे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: खेत के मेड़ में कहान और तरिया के पार में कहान, नदिया कछार में कहान, और ऐसा ढंग ले वातावरण है, माटी है, ओकर हिसाब ले हम जगह जगह में पेड़ पौधा खलो रोपत रही थन। और ऐसा जो खेती किसानी के बूता है माटी पानी और वातावरण के बड़ महत्व होते।
1: चंपेश्वर भाई एक ठन बात है कि ता आवा अगवान खूब कमावन, अपन मेहनत ज्ञान ले खेती ला उत्तम बनावन, खुद अपन पहचान बनावन, जोर मिलके सफलता पावन।
0: बिल्कुल जोर मिलके सफलता पावन। हमन अभी बात करत रहे सरिता आकाशवाणी के किसान वाणी के सलाह जमो हलो किसान वाणी के, है ना भाई? तो सलाह बड़ जरूरी है। अब हमर कार्यक्रम में अलग अलग विषय में विशेषज्ञ मन आते, अपन अनुभव ला हमर मन संग बांटते, अब वो सलाह ला हमन सुनथन गुंथन, अब अपन खेती किसानी के बूता में वो जो सलाह है उकर उपयोग करथन। तो वो जब सलाह के जब हम उपयोग करथन तो हमर बहुत अकन जो समस्या है उकर समाधान अपने अपन हो जाते। काबर की कथे ना कि समस्या के समाधान होते रतिहा के बिहान होते, और बिहान हलाते उमंग के सूरज तभे तो दिन महान होते। ऐसा नहीं भाई, आज के ये दिन में आज की सलाह क्रम के बारी हबे, तेमा विषय है ड्रैगन फ्रूट के खेती, विशेषज्ञ है नीलिमा डहरिया, शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र सांकरा जिला दुर्ग, और विशेषज्ञ मल्ले गोड बात कर रहे थे सरिता साहू। त सुनथन संगवारी हो आज की सलाह में विषय है ड्रैगन फ्रूट के खेती।
1: संगी हो फल फलिहारी के बात करन त हमर छत्तीसगढ़ में मौसमी फल जैसे आमा जाम चीता केला पपीता तो हमन बहुत खाए हैं, फिर आजकल बदलत बेरा में वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी फल के मांग भी तेजी से बाजार में बढ़त है। हमर छत्तीसगढ़ के बाजार में एक ठन बढ़िया फल आजकल देखप में मिलत है जेकर नाम है ड्रैगन फ्रूट। नाम ले ही पता चलत है कि ये विदेशी फल आए और विटामिन ले भरपूर ये फल के मांग बाजार में बहुत है। और बाजार के मांग के हिसाब ले यदि हमर किसान संगवारी मन खेती किसानी करत है तो लाभ भी बढ़िया मिलते। ता आज की सलाह में हमन जानकारी ले वो ड्रैगन फ्रूट के खेती के बारे में, और जानकारी दे बर विशेषज्ञ हमर बिचाए हैं नीलिमा डहरिया जी, शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन जिला दुर्ग ले। नीलिमा जी राम राम।
2: जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहर।
1: सबले पहली जैसे कि हमन बात करत हन ड्रैगन फ्रूट के, तो ये फल के सामान्य परिचय हमर संगवारी मल्ला बता देवा, काबर कि ये विदेशी फल है और बहुत जिन हमर संगवारी मल्ला जिज्ञासा हो ही ये फल के बारे में जाने के।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि आप हर बोले हो कि ड्रैगन फ्रूट है जो कि विदेशी फल है, ये हर मुख्यतः कैक्टेसी फैमिली के एक सेहतमंद और पोषक तत्व ले भरपूर फल माने जाते और मुख्यतः हर जो है थाईलैंड वियतनाम इजराइल और श्रीलंका में हर बहुत लोकप्रिय है। सामान्य परिचय के तौर में ए मां जो मिनरल्स विटामिन्स और

0: एंटीऑक्सीडेंट होते, इमा प्रचुर मात्रा में होते और अन्य औषधि गुण भी होते। एक सेवन ले आप मन के जो डायबिटीज है वो कंट्रोल होते, कोलेस्ट्रॉल भी कम करे में सहायक होते। एक सेती एक मांग हर जो शहरी इलाका में है वो हर ज्यादा है एक बाजार में खर कीमत हर चूंकि शहर में मांग ज्यादा है एक सेती 100 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक एक बिक्री होते। एक हाल ही के दिनों में भारत में एक खेती के ज्यादा चलन बढ़ गए हुए।
1: ये बढ़िया बात बताओ कि ये जो फल है ओकर मांग भी अच्छा है, भाव भी बढ़िया है नहीं? नीलिमा जी, ये ड्रैगन फ्रूट के खेती हमारे छत्तीसगढ़ में का संभव है? और यदि संभव है तो एक बार कौन से मौसम उपयुक्त है और माटी कौन प्रकार से चाहिए?
0: छत्तीसगढ़ में ड्रैगन फ्रूट पर खेती के अपार संभावना है। चूंकि ड्रैगन फ्रूट हर कैक्टेसी प्रजाति के ही होते तो इमा ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होए, ज्यादा तापमान में भी जीवित रही थे। तो छत्तीसगढ़ के गर्म और आर्द्र जलवायु पर बहुत उपयुक्त फल है हर, और एला कम रख रखाव की जरूरत होते है, लंबे समय तक इमा उत्पादन भी प्राप्त करे जा सकते। एक बार लगाए के बाद अपमन हर 20 वर्ष तक लगातार अपमन एक हर ले फल प्राप्त कर सकत हो। जलवायु और मिट्टी की बात करे जाए तो एक बार शुष्क, जैसे पहले बताए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे अच्छा होते, और मिट्टी वैसे तो ज्यादातर हर तरह के मिट्टी में उगाए जा सकते है, पर मिट्टी माँ पानी के पानी निकासी के उचित व्यवस्था होना चाहिए, जेखर लिए रेतीली दोमट से लेकर के दोमट मिट्टी एखर लिए सर्वोत्तम होते। जल जमाव का है कि वह जल जमाव हो ले एक पौधा खत्म हो जाते, नीचे ले सड़ जाते तो खत्म हो जाते। एक स्थिति हमारा जल निकास की उचित व्यवस्था करना चाहिए। और अगर फ्रूट लगाए के सही समय की बात करे जाए तो जून जुलाई या फिर फरवरी मार्च महिला लगाए जा सकते।
1: एक पौधा के बारे में हमारे संगवारी मन बताओ कि कैसन दिखते और कैसे कर जो उत्पादन हमन ले सकता?
0: चूंकि मैं बताया कैक्टेसी के है, कैक्टेसी प्रजाति के है, मतलब कि हर कैक्टस जैसे होते और हर लता ऊपर चढ़े वाले पौधा होते, इनमें कांटा भी लगे होते ता अब एला ऊपर चढ़े पर सपोर्ट की जरूरत होते। एक स्थिति हम एला पोल और तार है उखर माध्यम से एला लगाथन। एक जो कलम है वो मे जड़ निकलते, जिन जड़ हर वो पोल ल पकड़ के फिर ऊपर चढ़ते, और हमारा पूर्ण प्रयास करना है कि ओखर फैलाव ऊपर ले हो, ऊपर ऊपर जाकर के ऊपर ले फैले, जेखर ले कि जो फल है वो हमारा अधिक से अधिक प्राप्त हो सके।
1: अब जो उन संगी मन एकर फल या फसल लेना चाहते हैं ओकर खेती बर कैसे खेत के तैयारी करें, एला विस्तार ले बताओ।
0: खेती की बात करे जाए तो ड्रैगन फ्रूट के खेती बर सबसे पहली हमारा जुताई करना है, खेत ला जुताई करके समतल करना है ताकि मिट्टी में जो भी खरपतवार मौजूद है, जो भी कीटाणु रोगाणु मौजूद है वह नष्ट हो जाए। और उखर बाद आप मल्ला जुताई के बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मल्ला 70 से 80 टन जो सबले अच्छे सड़े हुए खाद होते उखर प्रयोग आप मन कर सकत हो। साथ ही आप मन पोटास और फास्फोरस लभी मिट्टी में परीक्षण के आधार पर आप मन खेत तैयार करते समय मिला सकत हो। खेत तैयार हो जाए उखर बाद आप मल्ला खेत तैयार करे के बाद गड्ढा तैयार करना है उखर बाद, तो गड्ढा तैयार करे बार आप मल्ला 2 बाय 2 मीटर के जो कि कतार से कतार की दूरी हो ही, और उमा 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा करे लिए। मई के महीना में गड्ढा लगाना है और ओला 15 दिन भर ओला खुला छोड़ देना है, जेखर से उमा उचित धूप पहुंची और जो भी धूप के कारण मिट्टी में जो भी हानिकारक कीड़ा मकोड़ा है उखर अंडा हुई वह नष्ट हो जाए। अब बुआई की बात करे जाए तो ड्रैगन फ्रूट के सब बुआई के सबसे अच्छा तरीका होते ओला काट के जो कलम होते जो कटिंग करते हैं ओला लगाए सबसे बढ़िया होते ओला लगाए बर, तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबा कलम आप मल्ला लेना है, और कलम तो आप मन हर कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकत हो, जो उद्यानिकी महाविद्यालय कॉलेज वहां से भी आप मन प्राप्त कर सकत हो। जैसे आप मन लकटिन अगर मिल गई तो आप मन ओला गड्ढा मा आप मन रोपाई के बाद उमा मिट्टी बालू और जो गोबर के खाद है ओला 1:1:2 के अनुपात में आप मन ओला मिश्रण का भर के पानी उचित पानी से सिंचाई करके
1: पौधा ला रोपित करना है। नीलिमा जी, यहू बताऊ कि ड्रैगन फ्रूट जो है ओकर कौन कौन से किस्म होते और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से किस्म के उत्पादन ले सकत हैं?
0: छत्तीसगढ़ के मौसम

0: आओ यहाँ के लाल पीली मिट्टी के हिसाब ले ड्रैगन फ्रूट के मुख्यतः तीन किस्म यहाँ बेहद अच्छा परिणाम दिए हवे। तो सबले पहली है रेड ड्रैगन, जेकर जो गूदा है वो हर अंदर ले लाल होते और बाहर ले भी ओका जो होते छिलका होते वो हर लाल होते, स्वाद में हर ज्यादा मीठा होते, एक सेती बाजार में एकर बहुत ज्यादा मांग है। और दूसरा होते व्हाइट ड्रैगन, जिन हर अंदर ले सफेद होते और बाहर ले लाल होते, लेकिन यह हर कम मीठा होते। यह हर मुख्यतः है डायबिटिक पेशेंट जिन मन रथन है उखर लिए हर बहुत अच्छा होते हैं। और तीसरा है येलो ड्रैगन, जिन हर बाहर ले पीला रंग के हुई और अंदर ले हर सफेद हुई, और स्वाद में थोड़े से खट्टा मीठा रहते। तो एक भी उत्पादन बहुत अच्छा होते हैं। ये तीन किस्म है जो कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से उपयुक्त तो माने जाते हैं। और उत्पादन की बात करें जाए तो छत्तीसगढ़ में तो वैसे अभी फिलहाल रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर में एकर उत्पादन होते हैं, लेकिन बस्तर और कोंडागांव में एकर सफल जो खेती है वो वहाँ के स्थानीय किसान भाई मनहर करत हैं। मनहर उत्पादन करके विभिन्न शहर में और यहाँ तक कि राज्य के बाहर में भी ओला बेचत हैं और अपन मुनाफा कमाते हैं।
1: यदि किसान भाई मन ड्रैगन फ्रूट उगावत हैं, ओकर पौधा के रोपण करत हैं, तो एमा सिंचाई के व्यवस्था कोन रकम ले करही? माने कतका पानी के एमा आवश्यकता होते, कतका पानी देना है, का कम पानी वाला क्षेत्र में भी एकर उत्पादन ले सकत हन?
0: बिल्कुल बिल्कुल, एला कम पानी वाले क्षेत्र में भी आसानी से हमन उगा सकत हन, काबर की एमा हमला तो पहली बात उचित जल निकास व्यवस्था हमला चाहिए ही चाहिए। ड्रिप की व्यवस्था हम करते हन, जेखर ले ओला उचित जितना पानी ओला आवश्यक है उतना पानी ओला ड्रिप के माध्यम से पहुंच ही जाते। ओला पानी कम से कम लगते, और जैसे कि मैं बताया भी हूँ कि वो कैक्टेसी फैमिली के है, तो नागफनी जैसे जाना तो वो सब मतलब कम पानी लगते हैं, तो वैसे ही ड्रैगन फ्रूट ला भी कम पानी लगते हैं। हाँ, लेकिन उर्वरक वो ओला अधिक मात्रा में ओला जरूरत पड़ते हैं, जिससे कि जो फल है वो हर उखर क्वालिटी बहुत अच्छा रहते हैं।
1: हाँ, तो नीलिमा जी यहू बताओ कि भाई शुरुआत में तो हमन उर्वरक डालते छन, फिर साल भर यदि ओकर पौधा बढ़त है तो अच्छा पैदावार बर कब कब खाद देना है, कतका मात्रा में खाद ला डालना है?
0: इखर लिए तो पहली जो मिट्टी है उखर जांच कराना सबसे जरूरी है।
1: यानी माटी के जांच बहुत
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: हाँ माटी की जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। ओकर हिसाब से फिर आप मतलब एकदम सटीक वृद्धि चाहिए, तो जैविक खाद के प्रयोग आप मन शुरू में कर सकते हो। जैसे कि हम जब हम खेत की तैयारी करत हैं तब हम वो में जैविक उर्वरक डाले छन, और मिट्टी में पोषक तत्व की कमी के आधार पर हम पोटास और फॉस्फोरस डाले छन। ओकर बाद प्रत्येक साल आप मन हर जैविक खाद की मात्रा 15 से 20 किलो आप मन हर साल बढ़ा सकत हो। जैसे आप मन हर ड्रैगन फ्रूट ला लगाए हो तो आप मल्ला साल में 3 बार आप मल्ला रासायनिक उर्वरक आप मल्ला देना है। फल लगेगी पहली के अवस्था में आप मन हर यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास ला 70, 80 और 60 ग्राम प्रति पौधा आप मल्ला देना है। फल आए के समय और फल तोड़े के दौरान तक भी यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटास ला आप मल्ला 60, 40 और 100 ग्राम प्रति पौधा के अनुपात में आप मल्ला रासायनिक खाद के रूप में आप मल्ला देना है।
1: अब यहू बतावो कि
0: देना
1: भाई
0: था
1: ड्रैगन फ्रूट के फसल कोनो संगवारी मन लेवा थे तो ये कतका दिन में तैयार हो जाते? माने हम पौधा लगा देहन तब फल पाए बर कतका इंतजार करे लागी, और एकड़ पाछू हमला उत्पादन कतका मिली? काबर कि भाई व्यवसायिक खेती करत थे किसान भाई मन, तो सबले पहली लागत और मुनाफा के बारे में सोचते। एक एकड़ पाछू एकर उत्पादन कतका मिलते और लागत के हिसाब से मुनाफा कतका हो जाते?
0: जैसे आप मन ड्रैगन फ्रूट ला लगाए हो तो आप मनला 1 से 1.5 साल बाद आप मनला फल प्राप्त हुई। मई और जून में जैसे फूल आई से तो अगस्त से दिसंबर तक आप मनला फल प्राप्त हुई। शुरुआत में जो फल है वो बहुत इक्का दुक्का ही है, इसने आप मन ओला अगर बाजार में बेचे के बात करे जाए तो आप मन उतका उत्पादन आप मनला प्राप्त नहीं हुई। तेखर लिए आप मन अगर कमर्शियल के बात करे जाए तो 2.5 से 3 साल के जब वृक्षर हो जाही तब आप मतलब उचित उत्पादन उखले प्राप्त हुई, जला आप मन स्थानीय बाजार में बेच सकत हो। अब उखर कतना उत्पादन होते उखर बात करे जाए तो एक पेड़ ले आप मतलब कम से कम 20 से 30 किलो तक फल आप मन प्राप्त कर सकत हो। और 1 हेक्टेयर के बात करे जाए तो 10 से 30 टन तक आपन फल उपज प्राप्त कर सकते।

0: ले सकत हे। तो किसान संगवारी हो ड्रैगन फ्रूट के बारे में आज हमन चर्चा करें। आशा है कि आप मन एकर लाभ जरूर लेहू और एला उगा के व्यावसायिक रूप से उत्पादन करके मुनाफा कमाहू। तो नीलिमा डहरिया जी आप मन हमारे स्टूडियो में आए और अतका सुघर जानकारी दे एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
2: और सरिता बड़ बढ़िया भी सलाह सुनें ड्रैगन फ्रूट के खेती। विशेषज्ञ रही नीलिमा डहरिया शोधकर्ता फल विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र साकरा जिला दुर्ग और ओकर मन से गोड बात होती ही करे हा बस। और ये देख अब एक ठन सूचना हमर कर हाबे ये हरे आगामी मंगलवार के प्रसारित हो या किसान वाणी के सूचना।
0: संगवारी हो अवैया मंगलवार के 1 सितंबर 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के विषय होही सब्जियों में जैविक एवं अजैविक तनाव प्रबंधन। ये विषय ऊपर आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान बर हमारे स्टूडियो में उपस्थित होही डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी एसोसिएट प्रोफेसर पादप शरीर क्रिया विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमार फोन नंबर है 400-3482 400-3483 400-3484 और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 1 सितंबर 2026 के सुबह 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही सूचना सिरावत है।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान
3: हम। और सरिता अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के, तो संवारी हो आज के प्रश्न ला लिखाओ। आज के प्रश्न है खरीफ फसल के प्याज की रोपाई कौन से महीना में होते। आज के प्रश्न है संगवारी हो खरीफ फसल के प्याज की रोपाई कौन से महीना में होते। और पाछू हफ्ता के प्रश्न रहीस धान में लगैया प्रमुख रोग कौन कौन से है, तो एक सही उत्तर है झुलसा रोग, भूरा धब्बा रोग, शीत ब्लाइंड जैसन औ कतको रोग है।
4: और सही जवाब लिख के हमर तीर पठोए हैं हमारे संगवारी मन श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल, शिवम साहू, मदनपुर कवर्धा ले, बठेना पाटन ले हैं बलकरण, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, प्रयाण वर्मा मन, लोरमी चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव मन, ओजस्वी यादव, धमधा सुखरी कला ले हैं उत्तम सिंह जंघेल, अमित सकून, आरुषि, ओशिका, अंजलि जंघेल में।
3: और उमेंद्र कुमार ने साथ महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, दिव्यांश, भूपेश, शिवानी साथ, तेंदु भाटा, मगर लोट ले। और ये तो रही से संगवारी मन के नाम, ता संगवारी मन बड़बड़िया अभी जवाब पठोई साहब है, तो जम्मू संगवारी मन ला सही जवाब पठोए खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई। और गोट आते गोट जाते गोट कहा से रहते, लेकिन गोट बात करत करत संगवारी हो मन होते एक आठ ठन गीत सुने के, ता सुनथन गीत पंचराम मिर्झा और साथी मन के स्वर में।
5: मोर छत्तीसगढ़ के तिहार संगीत मोला बड़ा निक लागे।

0: संगवारी हो अभी सुनेन गीत पंचराम मिर्झा और साथी मन के स्वरमा। सरिता, अभी बरसात के मौसम है और बरसात के मौसम हमर प्रकृति खातिर, हमर पेड़ पौधा खातिर, हमर तरिया नरवा खातिर, कुआं खातिर बड़ बढ़िया रथे। तो नरवा के पानी है बोहा जाते, नदिया के पानी घलो बोहा जाते। फिर अभी सबले बढ़िया हम काम कर सकते हैं कि जतका भी बरसात के पानी आवत है तेला बढ़िया तरिया में सकेल के रख ले मन, कुआं में अपने अपन सकला जाते। काबर की हमल ना पानी के जो महत्ता है ओला समझना जरूरी है। जब गर्मी के समय आते तो गर्मी के समय में हमन देखथन कि कोनो कोनो जगह जल स्रोत सुखा जाते। तो हमन ला यहो जिनिस के ध्यान रखना है कि जतका तरियम पानी रही, कुआ में पानी रही, तो वो हिसाब से जल के स्रोत बने रहते।
1: एकर संगे संग चंपेश्वर की

0: जल के जो स्तर है, भूजल स्तर के ला बनाए बर हमला वाटर हार्वेस्टिंग माने जल के संचयन करे के बहुत बढ़िया माध्यम एला हम घरों घर लगा सकथन। और जो छत के पानी जो बुहा जाते ओला भूया के अंदर तक पहुंचा सकथन।
1: बिल्कुल सही बात कहे हस। अब मैं हाँ दूसरैया में आहू कि पेड़ पौधा के घलो बड़ महत्व आवे। ए मन तो भाई माटी के कटाव ला रोकथे, तो जतका ज्यादा होए हम पेड़ पौधा लगावन और पेड़ लगावन और पेड़ लगा के जतन करन, तो पेड़ ला बढ़ाए बर ना ये जोन बरसात के सीजन है वो बड़ बढ़िया सीजन होते। हम देखथन कि गांव के जोन हमार संगवारी मन है ओकर मन में तो अपने अपन प्रकृति के सेवा जते। जैसे कोनो उमेर देखिस बारी बखरी देखी थन अपने अपन पेड़ पौधा लगा डरथे, खुद अपन बारी मा साग भाजी उपजाथे, खुद बढ़िया खाथे। और अभी तो बीच में हमार संगवारी मन है अपन पेरावट ले पैरा फुटू, बढ़िया देसी पैरा फुटू निकाल निकाल के खाए हवे। तो ये जो जम्मो जो जिनिस है ये चीज के ऊपर हमारे किसान संगवारी मन बड़ मन लगा के ध्यान देते, तो प्रकृति के संरक्षण सबके दिमाग में हावे। बस हमला ये देखना है कि जे जगह उपयुक्त लगे सही लगे वो जगह पेड़ लगावन और पेड़ ला लगा के बस मत छोड़न, पेड़ लगावन और पेड़ लगा के जतन कर। खेती किसानी के बात करें तभी हमारे युवा किसान संगवारी मन बढ़ चढ़ के खेती किसानी के बूता में अगवावत हावे थे।
0: और साक्षर जो युवा है हमार यदि खेती किसानी करही तो वह गजब के होही है नी। तो ये सुघर आरो संग हुआ थे जाए के बेरा और जावत बिरावत संगवारी मन ला बता दन। किसान वाणी के प्रायोजक रही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो संगवारी हो देव विदा जम्मो संगवारी मन ला सरिता
1: और चंपेश्वर के राम।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत।

0: हरिहरन और रक्षा श्रीवास्तव की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत के अंतर्गत।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत में लीजिए आप सुनिए ब्रज शहरवारी की आवाज में ये गीत।

0: गैर फिल्मी गीत में अभी आपने सुना अंकित तिवारी की आवाज में ये गीत।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: नेहा कक्कर और दर्शन रजक की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: साधना सरगम की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना और इसी के साथ ही गैर फिल्मी गीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए बाजीगर फिल्म का गीत विनोद राठौर की आवाज में। रानी मलिक के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में जुर्म फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राजेश रोशन। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या थोड़ी ही देर में रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब

0: सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया।

0: किया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल

0: बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से, आवाज श्रेया घोषाल की थी। गीत बोल रकीब आलम के, संगीत देवी श्री प्रसाद का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाजें अनिरुद्ध रविचंद्र, विशाल ददलानी और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार और शैलेंद्र के, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र और शंकर जयकिशन

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म डंकी से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे और आईपी सिंह के, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से, आवाजें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: दोस्तों आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत
2: समझना। यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम पर कड़ी नजर रखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना, एक अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहा थी।
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आएंगी, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ

लीना चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई।

उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मेद की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मेद को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शमी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

राजेश खन्ना के साथ एचएस रवेल की फिल्म महबूब की मेहंदी में लीना चंदावरकर की खूबसूरती देखते ही बनती थी।

सन 1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

फिल्म मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोडकर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: ओ जिंदगी है कभी खुशी है कभी।

0: खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत, लेकिन पहले सुनिए प्रोमो आजादी का जय घोष, वंदे मातरम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा,

0: अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

आजादी का जयघोष, वंदे मातरम। अभी आपने सुना ये प्रोमो, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विविध संगीत। पहले सुनिए मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए, आप सुनिए गुलाम अली की आवाज में ये कसल।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए, आप सुनिए चंदन दास की आवाज में ये कचल।

0: रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये गीत।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविध संगीत। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी। कार्यक्रम सूर्यामनी में आज सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी। कार्यक्रम सूर्यामनी में आज आपने सुना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। रात्रि के 11 बजे हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 11 बजने को है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करती है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
4: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों

0: में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल।